ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, सकसंवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि तदनुसार 2 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास

0: रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 44। मुख्य गायक स्वर है वाणी जयराम और राजेंद्र के। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जनेगी जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित्र

जनक सुता से वा तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकार की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे की 6:15 हो रहे हैं। सुविचार। जो दूसरों के लिए रोशनी बिखेरते हैं उनका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। इस सुविचार के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। श्रोताओं, आज गुरुवार है। इस दिन हिंदी फिल्मों से ली गई भक्ति रचनाएं प्रसारित की जाती है। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

अगली भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं, फिल्म तेरे नाम से। आवाज़ है अलका याग्निक की, गीत की बोल समीर की और संगीत हिमेश रेशमिया का।

अगली भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं, फिल्म बीवी हो तो ऐसी से आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की, गीत के बोल समीर के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, और अगली भक्ति रचना सुने श्रोताओं फिल्म पीके से। आवाज़ है सोनू निगम की और संगीत है शांतनु का।

कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना सुनिए श्रोताओं फिल्म ओ माई गॉड से। आवाजें हैं कैलाश खेर और मीत ब्रोस की, गीत की बोल कुमार के और संगीत अनजान का।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे की 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिए श्रोताओं फिल्म अपनापन से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत का ये गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म स्वीकार किया मैंने से आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत की बोल निदा फाजली की और संगीत है उषा खन्ना का।

फिल्म संगीत में आखिरी गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म खुदा गवाह से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की, गीत की बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे की ठीक 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। बातें जहां आपकी और हमारी और साथ खूबसूरत से नगमों का। तो बातें एक घंटे यूं ही करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस पहले गीत के साथ।

दोस्तों, सुबह का वक्त बेहद ख़ास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई सारी उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ कई सारी ताज़गी और नए सपने भी दस्तक देते हैं। जी हाँ, एक सुबह आप स्वस्थ तरह से उठते हैं और मन में एक नई उम्मीद को लिए उठते हैं, तो ये ईश्वर का एक आशीर्वाद ही होता है। जी हाँ, एक नया दिन एक नए मौके के रूप में हमें मिलता है जीवन में, और दिन की शुरुआत जो है इसी तरह से ईश्वर को शुक्रिया कर एक नए दिन को अपने नए प्रयासों के साथ अपने सपने की ओर बढ़ना चाहिए।

दोस्तों, सपने यानी जीवन का लक्ष्य। हर व्यक्ति के अपने छोटे बड़े लक्ष्य ज़रूर होते हैं जिन्हें वो हर दिन पूरा करने की कोशिश करता है, और ये लक्ष्य वही होते हैं जिनसे हमारा सुकून और हमारी खुशी जुड़ी हुई होती है। और ये तभी पूरे हो पाते हैं जब हमें सही मार्गदर्शन मिले। जी हाँ, मार्गदर्शन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेरणा हमें वहीं से मिलती है जहाँ सकारात्मकता हो, और प्रकृति से बड़ी प्रेरणा कोई और नहीं हो सकती है। जी हाँ, आसपास हमारे कोई मार्गदर्शन हमें मिले या ना मिले, लेकिन प्रकृति से हमेशा हमें सही और सकारात्मकता का संदेश मिलता है, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ सकें।

दोस्तों, भागदौड़ भरी जीवन शैली में कई बार हम थक कर हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में सिर्फ कुछ पल अगर हम प्रकृति के पास बिताएं तो ना सिर्फ एक नई उम्मीद मिलती है बल्कि आगे बढ़ने का हौसला भी मिल जाता है। जी हाँ, प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य है, जिसमें असीम संभावनाएं भी हैं। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस शर्त है कि रुकना नहीं है। ठीक वैसे जैसी कि चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती है हर विपत्ति को सहते हुए, लेकिन रुकती नहीं है।

दोस्तों, बात हम प्रकृति से जुड़े कई सारी प्रेरणाओं की कर रहे हैं, तो उसी की तरफ जो बात करें तो प्रकृति हमें कई सारे सबक सिखाती है। और वहीं अगर उन्हीं चीज़ों की अगर बात की जाए तो हमें प्रकृति धीरज, निरंतरता और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती है। जी हाँ, कुदरत से हम बहुत सी मूल्यवान जीवन रूपी सबक सीख सकते हैं। जैसे धैर्य और निरंतरता का सबक है कि एक छोटा बीज भी रातों रात विशाल पेड़ नहीं बन सकता, उसे भी सूरज की रोशनी, पानी, समय की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी धैर्य बहुत ज़रूरी होता है।

और दोस्तों, चलते चलते प्रकृति की जब हमने बात की, तो प्रकृति की जो सबसे बड़ी सीख कहें कि वो यही है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। कई बार पतझड़ में पेड़ों के सभी पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वसंत आते ही वे फिर से हरे भरे भी हो जाते हैं। यानी कि असफलता और किसी नुकसान का मतलब जीवन का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है। और फिलहाल की बातों के सिलसिला आज का यहीं तक, तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नई बातें और नए गीतों के साथ। तब तक बने रहिए आकाशवाणी जोधपुर के साथ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त

0: ही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की।

0: उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉ सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉ सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बम्पर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है।

0: मानसून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ानें डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will

0: स्वागत अभिनंदन सभी सुधीर श्रोताओं का, ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार। दोस्तों, नया दिन नई सुबह केवल सूरज के आने का संकेत नहीं है, उसके उगने का नाम ही नहीं है। ये उगना है यादों का, ये उगना है शब्दों का, ये उगना है सुरों का और नए जोश का। और यही जोश लेकर हाजिर हैं मैं कविता
1: और मैं सूफिया। बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। और जो खूबसूरत पंक्तियां कविता जी ने आप सभी को सुनाई, आई होप आपका दिन आज बहुत ही अच्छा शुरू होगा। और इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें तो होगी ही श्रोताओं, और साथ ही सुनवाएंगे एक से एक बेहतरीन नगमे आप सभी को। लेकिन इससे पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय। तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर से हैं पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं सुनील जयपाल।
1: अनाउंसर हैं हमारे साथ आकांक्षा वैष्णव।
0: और वहीं एफएम की कमान संभाली है नेमी चंद ने।
1: श्रोताओं नमस्कार, प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने।
0: ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

0: दोस्तों, जीवन जो है हमें कई तरह के रंग दिखाता है, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी हंसी के, कभी खुशी के। ये सारी चीज़ें जो है जीवन से ही तो जुड़ी है श्रोताओं। लेकिन जीवन में किस्म किस्म के लोग भी आते हैं, वो हमसे मिलते भी हैं, और हमारे जो संघर्ष होते हैं, हमारे जो दुख होते हैं, हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें वो भागीदार भी बनते हैं कभी कभी।
1: बेशक।

0: बहुत अच्छी बात कही है आपने सोफिया जी, कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में बहुत सारे लोग भागीदार बनते हैं, और वो लोग कई बार हमें संकट से उबरने का एक रास्ता दे जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी अच्छी भली जिंदगी को संकट में डाल भी देते हैं। लेकिन चाहे जो हो, उतार चढ़ाव जिंदगी के जो है ना, वो हमें मजबूत बनाते हैं,
1: बिल्कुल
0: जिंदगी को जीना सिखाते हैं,
1: ये
0: मुसीबत से लड़ना
1: बिल्कुल
0: सिखाते हैं।
1: कविता जी, ये एक रंग बिरंगे गुब्बारे के जैसे होते हैं,
0: बिल्कुल
1: जैसे कोई हंसी का गुब्बारा है, कोई खुशी का गुब्बारा है, ये सारे जो गुब्बारे जैसे जो हमारे जीवन के जो पहलू हैं वो हमसे ही आपस में जुड़े हैं।
0: और आप देख लीजिए, दीवार पर रंगीन गुब्बारे अगर लगा दिए तो दीवार खुश रंग हो जाती
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: एक चेहरे

0: जो है ना वो हमें मजबूत बनाते हैं,
1: बिल्कुल ये,
0: जिंदगी को जीना सिखाते हैं,
1: बिल्कुल ये,
0: मुसीबत से लड़ना सिखाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: कविता जी, ये एक रंग बिरंगे गुब्बारे के जैसे होते हैं,
0: बिल्कुल
1: जैसे कोई हंसी का गुब्बारा है, कोई खुशी का गुब्बारा है, ये सारे जो गुब्बारे जैसे जो हमारे जीवन के जो पहलू हैं वो हमसे ही आपस में जुड़े हैं।
0: और आप देख लीजिए दीवार पर रंगीन गुब्बारे अगर लगा दिए तो दीवार खुश रंग हो जाती
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: एक चेहरे पे खुशी आ जाती
0: तो
1: है,
0: ठीक उसी तरह
1: जिस तरह
0: से
1: बच्चा खुश होता है गुब्बारे लेके।
0: ठीक उसी तरह से ये सारी सिचुएशंस जो है ना ये हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है।
1: बिल्कुल।

0: श्रोताओं कहते हैं कि जीवन एक कोरे कागज़ की तरह है, उस पर क्या लिखना है, क्या मिटाना है, वो हमें तय करना है। लेकिन कागज़ से याद आया कि बच्चे जो हैं अभी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश आए और कब उस कागज़ की कश्ती बनाकर हम उस पानी में चलाएं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे क्यों, हम भी और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारे भीतर भी एक बच्चा है जो झूमना चाहता है, जो बाहें फैलाकर बारिश में भीगना चाहता है और ज़िंदगी में विचारों के उन रंगों को भरना चाहता है जो हमारी कल्पनाएं तय करती है। और इस तपिश में कल्पनाओं ने भी सोना सीख लिया
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो भी अब काम नहीं करती, उन्होंने भी छुट्टी मांग ली है और हर तरफ एक ही एक इंतज़ार दिखाई पड़ रहा है। और अब जब हम न्यूज़ देखते हैं टीवी चैनल्स पे तो लगता है कि कहीं तो इतना पानी बरस रहा है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, और हे भगवान हम क्यों बारिश को तरस रहे हैं। तो आइए विचारों के अलग से रंग कुछ बरसात को लेकर भरते हैं अपने इस प्रोग्राम में।

0: कहते हैं ना कि बारिश जब होती है और बारिश की पहली बूंद तपती हुई धरती पर पड़ती है तो धरती के मन मयूर भी नाच उठते हैं। और ऐसा ही इस गीत में कहा है कि
1: बिल्कुल
0: आ जा रे बरखा, आ गम को बहा ले जा।
1: बिल्कुल, बरखा का हर किसी को इंतज़ार है, और पहली बारिश जो है उसका तो खास ही रंग होता है। बच्चे बड़े सभी पे मन मयूर नाच उठता है और मन खुश भी हो जाता है। कुछ ऐसी ही चीज़ होती है पहली बारिश में। बिल्कुल, पहली बारिश की बात की है श्रोताओं, और जल्द ही हमारे शहर में भी बारिश आएगी। आपको गर्मी की तपिश से जो है वो ज़रूर राहत मिलेगी।
0: राहत मिलेगी। और पहली पहली का जब आपने जिक्र किया ना, पहली पहला शब्द जो है ना वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समेटे रहता है।
1: बिल्कुल।
0: पहला पहली पहली बार की बारिश, या पहला एहसास, पहली मुलाकात, पहली नज़र, पहला इम्तिहान,
1: और पहला
0: प्यार।
1: प्यार वो भी तो खास ही होता है।
0: बेशक खास होता है। और इस पहले प्यार को लेकर कई सारे गीतों ने, जिसमें से हम नए नवेले में से चुने, तो ये बड़ा ही खास है।

0: बिल्कुल श्रोताओं, गाने से पहले हमने बात की थी कि पहली जो चीज़ होती है वो बहुत ही खास होती है, चाहे पहली मुलाकात हो, एहसास हो और प्यार ही क्यों ना हो।
1: बिल्कुल। और पहले का हम बात कर रहे थे, लेकिन प्यार के भी माने ना समय समय पर एकदम अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक समय हुआ करता था जब प्यार पर पूरा जीवन कुर्बान, है ना, जैसे ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह से भौतिक हो। मीरा जी को ले लीजिए,
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने कृष्ण को देखा ही नहीं लेकिन पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और उनके लिए कोई और वजूद का होना उनके
0: मायने
1: जीवन
0: नहीं
1: में
0: रखता
1: ज़रूरी
0: था।
1: ही नहीं था,
0: बिल्कुल
1: है ना। वो तो कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो प्यार का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। प्यार का मतलब है अगर हो तो सिर्फ तुम ही हो।
0: बिल्कुल

और इसी के साथ श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और फिलहाल हम एक न्यूज़ ब्रेक के लिए रुकेंगे। 9:10 पर फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार के साथ।

0: कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के देवमाली गांव के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वे जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जयपुर में लोक मंथन 2026 के कर्टिन रेजर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से राजस्थान की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मजबूत पहचान दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति भक्ति विचार वीरता संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि है और हमें इस पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भारत के लोग विषय पर आयोजित हो रहा लोक मंथन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक संवाद का माध्यम बनेगा।
2: ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है। आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहर हो, स्वागत हो, वो अपने आप में निराला मिलेगा। और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। ये आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को का महोत्सव बनाएं।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोक मंथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस अवसर पर लोक मंथन की वेबसाइट का लोकार्पण और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आज समापन होगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

0: के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होंगे। सम्मेलन में आज डिजिटल गवर्नेंस तथा उभरती प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर 3 प्लेनरी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फंडिंग नेटवर्क संचालित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपित रफीक खान चांद शेख महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी है। इस पर आईएसआई के लिए काम करने और जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक धनराशि पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई। इस मामले में जैसलमेर निवासी एक व्यक्ति और असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यरत एक कर्मचारी को गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। कार्यवाहक सीजे न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने श्री सावंत को व्यक्तिगत रूप से एसोसिएशन की प्रबंध समिति के चुनाव 3 महीने में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 29 जुलाई तक अदालत को चुनाव कार्यक्रम से अवगत कराने को भी कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की ओर से 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चलाने, अवैध पार्किंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ और जवाबदेह तरीके से काम करने के निर्देश दिए। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और चुनाव आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हो।
0: और अब मौसम। प्रदेश में आषाढ़ महीने की शुरुआत कुछ स्थानों पर बरसात के साथ हुई। राजधानी जयपुर में कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। भरतपुर में कल सुबह बरसात के बाद दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कोटपूतली बहरोड जिले के कोटपूतली, विराटनगर और पावटा में कल देर रात हल्की बरसात से मौसम सुहावना हो गया। भीलवाड़ा में भी देर रात तेज हवा के साथ कुछ देर झमाझम बादल बरसे। इस बीच आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं तथा नम हवाएं चल रही हैं। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया है कि वहां बादलों की आवाजाही से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पूर्वी इलाकों से मॉनसून दस्तक देगा। उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जुलाई को कोटा तथा उदयपुर

0: संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कल से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक किया जाएगा। आयोग के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तारीख से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के देवमाली गांव से वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ करेंगे। जयपुर में चल रहे 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आज केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आज से विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में मॉनसून के आज प्रवेश के आसार, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार में।
2: और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या रहा इतिहास में आज खास। तो दोस्तों, आज ही के दिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की हत्या हो गई थी।
1: और श्रोताओं, साल 1940 की बात करें तो आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया था। और 1964 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने ऐतिहासिक नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे और इससे देश में नस्लीय भेदभाव पर रोक लगी थी।
2: '79 में सुशान बी एंथनी डॉलर जारी किया गया था और एक महिला का सम्मान करने के लिए पहला अमेरिकी सिक्का था ये।
1: साल 1972 में आज के दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
2: और अब बात करें 2002 की, तो आज ही के दिन हेपेटाइटिस सी को जांच को पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया था।
1: '2004 में श्रोताओं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था आज ही के दिन।
2: और 2 जुलाई 2012 में स्पेन ने इटली को हराकर यूरो कप फुटबॉल जीता था।
1: और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, किसी से पूछा जाए कि आपको क्या शौक है या क्या अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें पानी के किनारे पर बैठकर पानी में गिरती उठती लहरों को निहारना बेहद अच्छा लगता है। और क्यों ना लगेगा, सच में पानी सभी को अच्छा लगता है। लेकिन पानी की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जहाँ सूरज की रोशनी भी झिझक कर उतरती है, जहाँ खामोशी बोलती है और हर सांस की कीमत और बढ़ जाती है जब किसी को तैरना ना आए और वो पानी में उतर जाए।
1: बिल्कुल, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं श्रोताओं, जो इस खामोश दुनिया में सांस लेते हैं, जो डूबते को बचाते हैं। हमारे स्टूडियो में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जीवन रक्षक गोताखोर भारत चौधरी जी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
1: बहुत बहुत स्वागत भरत चौधरी जी आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार में।
2: नमस्कार दीदी।
1: तो भरत चौधरी जी,
0: छोटा सा अपना एक परिचय हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल
2: जी, मैं जोधपुर में रहने वाला हूँ, कायलाना झील पे।
1: बिल्कुल
2: अच्छा, और डूबते हुए लोगों को बचाने का मेरा निःशुल्क कार्य है।
0: जी, जब आप, हाँ जी,
2: मैंने अभी तक 300 से 350 लोगों को जीवित बचाया है, 150 बॉडी बाहर निकली है। और सभी जोधपुर वासियों और राजस्थानों के लोगों को सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जैसे अभी बारिश का मौसम होने वाला है, तो बारिश में जहाँ कोई खड्डा दिखे, जहाँ कोई पानी हो या कोई नाली हो, तब वो जैसे भी कोई भी चीज हो, पानी के पास ना जाए। खड्डा
0: जी,
2: कितना गहरा हो सकता है, उसका नाप नहीं लिया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया
2: इसलिए
0: आपने।
2: सबसे ही निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसे घटना से दूर रहें।
0: जी, तो भरत जी, सबसे
2: जी
0: पहला सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप पहली बार पानी में लगभग 50-60 फीट नीचे उतरे होंगे, तो वो पल कैसा था? डर था, रोमांच था, कुछ और था? हमारे
2: देखिए,
0: श्रोताओं के लिए बताएं।
2: पहली बार एक लड़का और एक लड़की डूबे थे।
0: अच्छा,
2: वो 33 फीट नीचे गहराई में थे पानी के अंदर, तो उनको बाहर निकलना था। और जो जीवित बच गए दोनों,
0: या ये बड़ी खुशी की बात है।
2: उसकी वजह से उनके परिवार वाले और सभी जो बालेश्वर गांव के थे, तो बालेश्वर तो अभी जिला बन गया, पहले गांव था, तो बालेश्वर के थे रहने वाले, तो वो सब के सब उन्होंने मुझे बहुत ही खुशी दी और बहुत ही आशीर्वाद दिया। उसकी वजह से आज मैं लगातार ये सेवा कर रहा हूँ।
0: तो आपको ये विचार कब आया कि आपको ऐसा करना चाहिए?
2: मैं 13 साल की उम्र के अंदर ये सेवा करनी शुरू कर दी, क्योंकि
0: आपने तैरना
2: मैं
0: सीखा?
2: कायलाना झील पर ही रहता था और पढ़ाई कर रहा था, तो साथ साथ में ये लोग डूब रहे थे। और जो डूबते हैं वो, उनका शव मिलता है तो वो परिवार वाले आते थे, चिल्लाते थे, तो उनकी देखते हुए मैंने ये संकल्प ले लिया कि मेरे सामने किसी को डूबने नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा जब तक किसी को डूबने नहीं दूंगा।
0: तो आपने फिर तैरना सीखा?
2: तैरना यहाँ कायलाना पर ही सीखा था, 2013 के अंदर मैंने तैराकी सीखी थी,
0: जी,
2: और उसके
0: बिल्कुल
2: बाद लगातार ये सेवा कर रहा हूं।
1: बिल्कुल भरत चौधरी जी, अब सवाल ये उठता है कि गोताखोरी में सिर्फ तैरना आना काफी नहीं होता, यानी ऑक्सीजन, प्रेशर, अंधेरा, बहुत सारी चुनौतियां होती है। आप अपनी किट में सबसे जरूरी क्या मानते हैं, और अगर एक आम आदमी को पानी में जाने से पहले, अगर वो जाए, तो उसको पानी में जाने से पहले कौन सी दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए?
2: पानी के अंदर, एक तो अगर आपको स्विमिंग पूल या कोई छोटे तालाब में तैरना आता है, तो बड़े झीलों में या बड़े बड़े तालाबों में आपको जाना नहीं चाहिए। और जहाँ कम पानी हो, टांका हो, कुआ हो, उसमें भी नहीं जाना चाहिए। उसको पानी को काटने में और जो तालाब में पानी काटने के लिए वो डिफरेंस रहता है, उसमें बहुत अंतर होता है। और एक, आप तैर रहे हो, बाई चांस आपके क्या है कि ये बाइंटा आता है, पैर पे आ जाता है, हाथ पे आ जाता है, पीठ पे आ जाता है, तो नाड़ नाड़ वो नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाती है, नाड़ी के ऊपर नाड़ी चढ़ने की वजह से

0: बाइटा आता है, और बाइटा की वजह से वो कितना भी बड़ा तेरा क्यों ना हो, वो भी डूब जाएगा। वो कहावत है कि तेरू की राउंड होती है, तो इसलिए वो होती है।
1: जी,
0: तो
1: इससे कैसे बचा जाए अगर तैराकी के दौरान?
0: उल्टा तैर रहे और बाइटा आ गया तो आपको सीधा हो जाना चाहिए और आराम से पैर सीधा करके धीरे धीरे, अगर नहीं तैर रहे हो तो सो जाओ पानी के ऊपर। और जो बड़ा तैराक है उसको सोना भी आता है पानी के अंदर, आराम से सो सकते हैं। सुबह घूम जाओ, उल्टा हो तो सुबह घूमोगे तो अपने आप वो बाइटा निकल जाएगा। बाइटा निकलने के बाद में आप वापस तैरना शुरू कर दोगे।
1: जी,
0: ऐसी एक घटना जोधपुर के अंदर हुई थी, कैप्टन अंकित गुप्ता थे तो ट्रेनिंग के दौरान उसको बाइटा आ गया और ऊपर से जंप लगाया था, बाइटा आने की वजह से वो कायलाना में डूब गए। 7 दिन तक से वो नहीं मिला था, 7वें दिन मैंने निकला था उनका।
2: तो इतनी गहराई में जब आप जाते हैं पानी में,
0: जी
2: तो इतने समय तक सांस रोक कर रखना तो असंभव है।
0: वो कंटिन्यू मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ कायलाना के अंदर के मैं कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना जा सकता हूँ। तो मेरी कैपेसिटी अभी 30 से 35 फीट हो गई है। धीरे धीरे रात दिन मैं कंटिन्यू वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी वो कैपेसिटी बढ़ी है।
2: तो आप कोई किट रखते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ऐसा कुछ?
0: कुछ नहीं है, मेरा देसी जुगाड़ है, लाइबॉय है, रिंग है, ट्यूब है और बिलोया है, ऐसे वो देसी एंकर बनाए हुए हैं, देसी जुगाड़ से मैं ये कर रहा हूँ।
2: जी भरत जी, आपने कहा कि आपने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को पानी से निकाला है, रेस्क्यू किया है, तो कोई एक ऐसा मिशन जो आपको याद हो, आपकी आंखों के सामने समय समय पर वो तैर जाता है, और कोई ऐसा पल जहां आपको भी लगा हो कि अब तो खुद मेरे बचने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपने हार नहीं मानी हो और वो सक्सेस आपको मिली हो?
0: बिल्कुल, ये 2021 की एक घटना हुई थी मेरे साथ।
2: जी,
0: जो सगे 3 भाई आए थे,
2: जी,
0: और जिसके अंदर तीनों भाई कायलाना झील के अंदर सेल्फी लेते हुए डूब गए थे।
2: जी,
0: एक दूसरे को बचने के लिए तीनों पानी के अंदर चले गए।
2: हाँ,
0: और तीनों को बचाने के लिए मैं भी कूद गया। तो तीनों ने मुझे बीच में पकड़ लिया। तीनों को तैरना नहीं आता था
2: जी,
0: तो तीनों को छुड़वाने के लिए मैं भी डूब रहा था उनके साथ और छुड़वा नहीं पा रहा था। तो मैंने एक दिमाग में सोची क्यों इनको छुड़वाने के लिए क्या करूं। तो मैंने उनके हाथ, किसी के हाथ हाथ झिला तो हाथ से दाता भर लिया, किसी के बाल झिले तो बाल खींचे, ऐसे करके छुड़वा दिए तीनों से। तीनों से बहुत मुश्किल से छुड़वाया। मुश्किल से छुड़वाने के बाद में उनको तीनों को बाहर निकालने में बहुत प्रयास किया, जिसने दो को बाहर निकाल लिया और दोनों को जीवित बचा लिया गया, एक मर गया था। सके 3 भाई थे, 3 ही थे उसके पिताजी के, 4 बहने और 3 भाई थे, उसमें से 2 को जीवित बचाया, 1 खत्म हो गया।
2: जी, तो उस समय आपको भी लगा होगा कि यहाँ से बच के जाना मुश्किल है, है ना?
0: मुश्किल था और रियल में था मुश्किल, बहुत मुश्किल से मैं बच के आया था। और वहाँ बचाने वाले और पास में कोई रस्सी फेंकने वाले इतने लोग थे, लेकिन किसी ने कोई रस्सी नहीं फेंक सके।
2: जी जी जी जी,
0: ऐसी घटना होती है। और पास में कोई देख रहे हैं तो आपके पास, चाहे गांव के हो तो किसी के पास चुंदड़ी होती है, किसी के पास कुछ भी कपड़ा होता है,
2: साड़ी होती है, साड़ी की भी काफी लंबाई होती है,
0: किसी के पास कोई भी चीज वस्तु हो, और कोई सिटी के अंदर हो या किसी पास में हो, किसी के अंदर पैंट होती है, वो पैंट भी उतार कर अगर उसको फेंक के बचा सकता है, कूदने से नहीं बचेगा, और वो अगर पैंट फेंकेगा और कपड़ा पकड़ लिया वो सुरक्षित बाहर निकल सकता है।
2: जी, क्योंकि पानी में हल्के हो जाते हैं, वजन
0: हल्के हो जाते हैं। ऐसी घटना एक सुरपुरा डैम में हुई थी, 7 लोग डूबे थे।
2: ओहो,
0: जोधपुर के अंदर ईद का त्योहार था, 7 आए, 7 में से 7 डूब गए एक दूसरे को बचाने के लिए।
1: बिल्कुल भरत जी, बिल्कुल। और जब हम आपको, बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं अभी, तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो कायलाना, बैरीगंगा या बावड़ियों में अक्सर हम हादसे सुनते हैं, यहाँ पानी जो है वो उसमें क्या खास चुनौती है? और एक सवाल ये भी है कि क्या आप जोधपुर में ही ट्रेनिंग देते हैं?
0: जी, ट्रेनिंग तो मेरी यही है कि जहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है दाऊद की जानी पर नगर, वहाँ हम देते हैं ट्रेनिंग
1: जी।
0: और एक कायलाना झील ऐसी झील है जो साल में वो अपने आप 2-4 लोगों को तो कैसे कि कितनी भी ध्यान रखोगे तो भी डूबेंगे वहाँ
1: जी।
0: ये कायलाना

0: ख्वाहिश से, आज से नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद को 13 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन ये घटना हमेशा होती आ रही है।
1: जी। तो ये तो झील की बात हो गई। अब जैसे बैरीगंगा है, बावड़ियां हैं या कुएं हैं।
0: तो बावड़िया में यही होता है कि ऊपर से लोग आते हैं, जंप लगाते हैं कि हमें तैरना आता है, और वो जंप लगाते हैं, जंप लगाते समय वो बाइटा आता है, और बाइटा आने की वजह से वो नीचे चले जाते हैं, उसके बाद वो वापस आने का संभावना ही नहीं रहती है।
1: हाँ, तो वहां से, वहां के लोगों को बचाने के लिए कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं और तैयारी होती है, या एक ही व्यक्ति जो झील में से बाहर निकाल सकता है वही व्यक्ति कुएं में से भी बाहर निकाल सकता है, बावड़ी में से भी बाहर निकाल सकता है?
0: जी वहाँ भी हो सकती है सरकार की तरफ से, अभी नागरिक सुरक्षा जोधपुर के अंदर 300 बंदे हैं, तो वहाँ हर बावड़ी पे एक एक बंदा लगा दे तो वो बचा सकते हैं,
1: जी।
0: और रोक टोक भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कायलना पे निःशुल्क रोक टोक कर रहे हैं, निःशुल्क बचा रहे हैं, तो उनको तो सैलरी मिल रही है, सरकार भी वहाँ बैठक को तिनका दे रही है, तो उनको वहां लगाना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने
1: जी।
0: एप्लीकेशन भी दी थी सरकार को, मैंने कहा ये ऐसे दुर्घटना हो रही है, तूर जी के झांझरे में अभी पिछले महीने में एक घटना हुई थी,
1: जी।
0: तो वो लड़का ऊपर से डाई लगाई, और डाई लगाने की वजह से वो नीचे सिर पे चोट आई, और वो नीचे ही रह गया, ऊपर ही नहीं आया, तो ऐसे में हुआ था। मैंने प्रशासन को वो लेटर भी लिखा था, मैंने कहा सर ऐसा है श्रीमान जी, यहाँ आपने गोताखोर लगा दो, एक या दो, ताकि वो बचा सके।
1: वैसे कहते भी है ना कि डाई उसी पानी में लगानी चाहिए जो पानी आपका जाना पहचाना हो, जिसकी
0: हाँ वो तो
1: गहराई के
0: बात
1: बारे में
0: है
1: आप जानते हो।
0: जी,
1: और एक सवाल ये उठता है भरत जी कि कोई जो लोग गोताखोर नहीं हैं पर पानी के वो आसपास रहते हैं, उनके लिए आपकी एक सबसे ज़रूरी सुरक्षा सलाह क्या होगी? क्योंकि कई जो आज के युवा हैं वो एडवेंचर के लिए स्कूबा डाइविंग भी सीखना चाहते हैं।
0: जी वो सीखना चाहते हैं तो स्विमिंग पूल है, जैसे कि बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, कोच भी है, उनसे सीखने के बाद में अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेनर हो, या वहाँ का स्थानीय, जैसे रात दिन अनुभव होना चाहिए कि भाई ये स्थानीय गोताखोर है, इनको पूरा ध्यान है कि इसमें कैसा पानी है कैसा नहीं है, अब हर जगह क्या कहाँ पर भी कोई झाड़ियाँ होती है, कोई झाड़ियाँ होती है, कुछ भी बबूल भी होते हैं, कुछ पत्थर भी होते हैं, तो आप जैसे डाई लगाते हो सिर पे लग जाती है या झाड़ियाँ में फंस जाते हो, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए आपको। अगर जाना पहचाना पानी हो और आप रात दिन जो डाइव कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो 2 मीटर दूरी बनाकर ही रखे,
1: जी
0: और पानी के पास में कभी भी धक्का मुक्की ना करें, मजाक मस्ती करते हैं तो भी दूर करें, क्योंकि अगर मस्ती मस्ती में ऐसे क्या भी हादसे हो गए, जो घूमने के लिए आते हैं ऐसे हंसते हंसते खेलते खेलते डूब जाते
1: और
0: हैं,
1: आजकल तो हम देखते भी हैं कि कई जो युवा हैं वो रील्स के चक्कर में अपनी जान गंवा देते
0: और
1: हैं।
0: अब ये रही बात जो ग्रामीणों की, ग्रामीणों में अभी जो सरकार की तरफ से वो होद बन रहे हैं, तो होदों के अंदर जो पानी के होद बने हैं और तिरपाल बिछाते हैं, वो तिरपाल होता है चिकना, जो तिरपाल की वजह से वो सेल्फी ले रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो सेल्फी के चक्कर में वो तिरपाल चिकना होता है, चिकने की वजह से वो पैर लिप होता है, और होदे की 10-12 फीट गहराई होती है, और वो चले जाते हैं। ऐसे अभी जोधपुर के अंदर पिछले महीने और इस 4 महीनों के अंदर मैंने ये देख लिया है कि 30 से 40 लोग डूब गए हैं।
1: इस कारण
0: हाँ, इसकी वजह से जोधपुर संभाग के अंदर 30 से 40 लोग डूबे, अभी बाड़मेर के अंदर वो दो डूब गए थे, माँ और बेटा,
1: जी।
0: तो ऐसी घटना हो रही है लगातार, तो यही उनसे कर रहे हैं निवेदन के 2 मीटर दूर रखो, आप वीडियो बना रहे हो तो 2 मीटर दूर रह के बनाओ, उस मैनिये के ऊपर से क्यों बना रहे हो, ताकि
1: बिल्कुल
0: मैनिया चिकना होता है और पैर स्लिप होता है, आपको दिख रहा है कि
1: जी
0: यहाँ से पैर स्लिप हो सकता है, किस ट्रेन में जान जा सकती है, तो
1: भरत
0: आप वहां
1: जी,
0: जाओ ही मत, ताकि आपकी जिंदगी बच सकेगी।
1: बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही अनमोल सलाह आपने अपने हर बात में दी है हमारे श्रोताओं को। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना वक्त और अनुभव हमारे साथ साझा किया और हमारे इस निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। पर चलते चलते हम आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे कि आप रेडियो सुनते हैं
0: जी बिल्कुल,
1: तो गीतों का भी शौक होगा आपको?
0: नहीं गीतों का नहीं, मैं थोड़ी न्यूज सुनता हूँ, न्यूज हमेशा सुननी
1: अच्छा,
0: चाहिए
1: कोई
0: आदमी
1: आपकी
0: के
1: पसंद का
0: लिए,
1: गाना हो तो आप बता सकते हैं, हम बजाएंगे आपके लिए।
0: बिल्कुल पसंद का तो गाना अभी ऐसा कुछ नहीं है, मारवाड़ी में है
1: अच्छा, फिल्मी गाने आप कम सुनते हैं?
0: जी, फिल्मी गाने कम सुनते हैं,
1: चलिए कोई बात
0: मेरा
1: नहीं।
0: प्रसिद्ध
1: एक
0: गाना जाज भाई है।
1: जी, पर आपने हमें समय दिया, अपना अनमोल समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आपकी इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं और आपकी सलाह

0: को हमारे सभी श्रोता याद रखेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। शुक्रिया,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, याद रखना चाहिए कि पानी हमारी जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, या यूं कह दें पानी हमारी जिंदगी है, पर लापरवाही से यही पानी हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। तो अगर ऐसी जगहों पर जाएं तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गीत के जरिए।

श्रोताओं, फ़ोन आउट के माध्यम से ये बातचीत सुनी है आपने भरत चौधरी, जो कि गोताखोर हैं, और इस फ़ोन आउट का संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरूड की।

0: अब इस कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और दिवस विशेष की बात करते हैं। आज 2 जुलाई है और यही वो दिन है जब 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार संघ यानी AIPS की नींव रखी गई थी।
1: और ये है खेल पत्रकारिता दिवस। और उस दिन से ही ये दिन जो है उन लोगों के नाम समर्पित है जो मैदान पर तो नहीं खेलते पर खेल को घर घर पहुंचाते हैं। और जरा सोचिए, रेडियो पर अगर मैच की कमेंट्री नहीं होती, अखबार में अगर रिपोर्ट नहीं छपती कि भारत विश्व जेता बन गया, तो क्या हम वो खुशी के पल जी पाते? नहीं ना। तो खेल पत्रकार हमारे वो आंख और कान है जो स्टेडियम की धड़कन को करोड़ों दिलों तक पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, चाहे बारिश में भीगते हुए मैच कवर करना हो या खिलाड़ी की हार के बाद उसके आंसू समझकर शब्दों में पेरना हो, वो सब करते हैं और ये काम जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है।
1: आज खेल पत्रकारिता जो है वो सिर्फ स्कोर बताना नहीं है, ये खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी को कहना है, डोपिंग पर सवाल करना है, फेडरेशन की जवाबदेही को समझना है। और ये है नीरज चोपड़ा के गांव तक पहुंचने की कहानी, ये है पीटी उषा के उस दर्द को लिखने की कहानी जो मेडल को चूकने पर होता है, यानी खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी कहता है एक खेल पत्रकार।
0: बिल्कुल, और जो डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल ज़माने में तो और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है ये काम। एक ट्वीट, एक रील, 2 मिनट का विश्लेषण, पर सच्चाई, निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखना, यही है असली पत्रकारिता।
1: तो हम सलाम करते हैं उन सभी खेल पत्रकारों को जिनके कलम से निकले शब्दों ने हमें रुलाया भी, हंसाया भी और गर्व से भी भरा। और ये जो सैकड़ों युवा रिपोर्टर हैं जो धूप, बारिश और हर परिस्थिति में ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, वो खेलों को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हैं और खुद महसूस नहीं करवाते जबकि हमें भी महसूस करवाते हैं। तो खेल पत्रकारिता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: और श्रोताओं, आज 2 जुलाई है और इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो है वो बेहद अहम दस्तावेज के लिए दर्ज
1: दर्ज
0: है।
1: है और वो है शिमला समझौता दिवस, है ना।
0: बिल्कुल
1: और आज ही के दिन 1972 की वो रात जहाँ हिमाचल की वादियों में बसे शिमला के बॉन्स कोर्ट में दो मुल्कों ने एक लड़ाई के बाद अमन का रास्ता चुना था। और इसमें इसके एक तरफ थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
0: और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो।
1: और इनके बीच में 1971 के युद्ध का दर्ज जो है 93,000 युद्ध बंदियों का सवाल था और लाखों लोगों की उम्मीदें थी। 3 दिन की लंबी बातचीत के बाद कई बार डेडलॉक, कई बार उठकर चले जाने की नौबत और आखिरकार 2 जुलाई की आधी रात के बाद 12:40 पर इस समझौते पर दस्तखत हुए। और इस समझौते में 3 बातें खास रहीं।
0: बिल्कुल, इसमें पहली बात तो ये रही कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी मतभेद, खासकर कश्मीर मुद्दा, सिर्फ आपसी बातचीत से सुलझाएंगे और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता इसमें नहीं होगी।
1: और इसमें एक और बात थी, वो था नियंत्रण रेखा का सम्मान। 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम के बाद बनी लाइन को अब लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC माना जाएगा और दोनों देश इसका उल्लंघन एक तरफा नहीं करेंगे।
0: और एक बात ये भी रही कि युद्धबंदियों की वापसी की बात हो, व्यापार हो, संचार हो, लोगों का आना जाना जो है फिर से शुरू करने पर भी सहमति बनी।
1: तो ये जो समझौता है ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, ये भरोसे की वो नींव थी जिस पर दोनों देशों ने भविष्य की इमारत खड़ी करने का वादा किया था। और युद्ध को विराम दिया और बातचीत की शुरुआत की आज ही के दिन।
0: बिल्कुल, आज 2 जुलाई शिमला समझौता श्रोताओं हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल लड़ाई के बाद भी मेज पर बैठकर हल निकाला जा सकता है, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी हो, नुकसान हमेशा इंसानियत का ही होता है।

0: और श्रोताओं, अब करते हैं काम की बात। और आपके काम की बात ये है कि अगर आप आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि अभी तक तो इसके लिए 75 रुपये का शुल्क लगता है। लेकिन 1 जुलाई यानी कल से 2026 से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।
1: और 6 महीने तक ये होगा, यानी 31 दिसंबर 2026 तक ये लागू रहेगा। और 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के ज़रिए ईमेल अपडेट बिल्कुल फ्री है। अगर आप आधार में ईमेल आईडी लिंक या अपडेट कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए काम की बात है। बढ़ते हैं खास बात की ओर। तो 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस होता है और ये पॉप संस्कृति में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त उत्सव है। 1947 की रोसवेल घटना की ये याद दिलाता है और आसमान में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओ के प्रति जागरूकता बढ़ाने, खोज को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल आज ही के दिन ये दिन मनाया जाता है।
0: श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप की। बिल्कुल, इंग्लैंड ने कांगो को जो है वो 2-1 से हरा कर खुद को बचाया है। कांगो ने जो है मैच के 7वें मिनट में ही बढ़त बना दी, लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन ने 75वें और 86वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड को शानदार वापसी दिलाई और राउंड ऑफ 16 में इसको पहुँचा दिया। और श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राउंड ऑफ 32 यानी राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले जो हैं वो जारी हैं, तो इसी में बेल्जियम ने सेनेगल को भी रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया है। खेल खत्म होने से ठीक पहले सेनेगल आगे थी, लेकिन रोमेलू लुकाकू और यूरी टाइम लेमेंस ने गोल दागकर गेम को चेंज कर दिया।

0: और अब बढ़ते हैं।
1: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जो कि है AI ड्रिवन वेस्ट मैनेजमेंट।
0: तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर कूड़ेदान खुद ही बता दे कि मैं भर गया हूँ और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सबसे छोटा रास्ता खुद ही चुन ले, प्लास्टिक, कागज, धातु की मशीनें इंसानों से ज्यादा सटीक तरीके से कचरों को अलग कर दे तो कैसा होगा? ये कोई भविष्य नहीं है, ये आज की हकीकत है और इसके पीछे है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या करता है? ये ऐसी तकनीक जो डेटा से सीख कर निर्णय ले लेता है कि वेस्ट मैनेजमेंट में AI कैमरों, सेंसर, मशीन लर्निंग की मदद से कूड़े की पहचान करके उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटता है और पूरे सिस्टम को अधिक तेज और प्रभावी बनाता है, और इससे कई सारे फायदे भी हैं।
1: पहले फ़ायदे की बात करें तो वो है स्मार्ट कचरा संग्रहण यानी, और दूसरी की बात करें तो है बेहतर साइकिलिंग। और श्रोताओं, भविष्य की योजना, AI ये भी अनुमान लगा सकता है कि मेलों या छुट्टियों के दौरान किस इलाके में कितना अतिरिक्त कचरा निकल सकता है, इसकी भी पहले से तैयारी की जा सकती
0: और
1: है।
0: भारत से इसके जुड़ाव की बात करें तो
1: भारत हर साल करोड़ों टन ठोस कचरा पैदा करता है, ऐसे में AI आधारित तकनीकें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देश में कई स्टार्टअप और नगर निकाय AI आधारित कचरा छंटाई, स्मार्ट बीन और कलेक्शन रूट ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं। जैसे कि बेंगलुरु की भी एक कंपनी है जो डिजिटल तकनीक और डाटा को अधिक व्यवस्थित बनाने में इसकी मदद कर रही है।
0: और कुछ शहरों में स्मार्ट सेंसर वाले डस्टबिन भी हैं और आधारित कचरा संग्रहण प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये अकेला एक समाधान नहीं है, इसमें हमें भी याद रखना होगा कि हमें हमारी को क्या जिम्मेदारी है। गीले सूखे कचरे को अलग नहीं करेंगे तो सबसे आधुनिक AI भी पूरी समस्या को हल नहीं कर पाएगा। तो भविष्य का शहर केवल स्मार्ट नहीं होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए।

0: श्रोताओं, आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली जी को, जिन्होंने मजदूर और किसान संगठन को मजबूत कराने में बेहद ही अहम योगदान दिया था।
1: इसी कड़ी में याद कर रहे हैं असित भट्टाचार्य जी को, जिन्हें जो महान क्रांतिकारियों में से एक हैं और इन ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे और 2 जुलाई यानी आज ही के दिन 1934 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी।
0: और आज जन्मदिन के अवसर पर हम याद करें श्रोताओं हिंदी के उन कवियों में से एक जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं आलोक धनवा जी को, जिन्होंने बेहद ही बहुचर्चित कविताएं लिखी थी।
1: जी, यही हम याद करते हैं जयंती विशेष पर प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को। 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ और हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने बंगाली उड़िया फिल्मों में भी कई सारे गाने गाए, कई सारे नात कलाम गज़ल भजन भी इन्होंने गाए। और 1984 में वो मुंबई आए और पहली हिंदी फिल्म थी इनकी अंबर। अंबर
0: बिल्कुल। और मोहम्मद अजीज़ श्रोताओं प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी के गानों के बहुत ही बड़े फैन थे
1: और
0: और
1: इनके
0: हिंदी
1: गीतों
0: फिल्मों
1: में
0: में, हाँ, और इनके गीतों में भी इनकी थोड़ी सी झलक
1: झलक
0: मिलती
1: दिखती
0: है।
1: है।
0: और हिंदी फिल्मों में उन्हें सबसे बड़े ब्रेक की बात करें तो वो मिला जब संगीतकार अनु मलिक ने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मर्द में उन्हें गाना दिया था।
1: इन्होंने अलग अलग भाषाओं में तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए और कई सारे गाने इनके बड़े फेमस हुए, जिसमें से माय नेम इज लखन, तुझे रब ने बनाया जो गाने हैं वो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि
0: हिंदी फिल्मों को कई सारे बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले गायक मोहम्मद अजीज़ का निधन जो है श्रोताओं वो 27 नवंबर 2018 को हो गया था।
1: लेकिन गीतों के माध्यम से ये आपके और हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे।

0: संदेश को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अंधेरा एक है तो लाखों सितारे भी हैं। श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ आज के नमस्कार कार्यक्रम को देते हैं विराम। तो कविता पवार
1: और सूफिया खान को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के ठीक 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुमान राम बिश्नोई, पीडियाट्रिशियन जालौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
2: लंबे समय तक भीगे कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें। बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाए और गीले जूते मुझे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल न भेजे। यदि बच्चे में सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण है तो उसे आराम करने दें। इसके अलावा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: लोक संगीत में पहली लोक रचना सुनिए श्रोताओं, सीमा मिश्रा की आवाज में।

0: इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे की 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर गुमान राम विश्नोई, पीडियाट्रिशियन जालोर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
2: लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें। बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाए और गीले जूते मुझे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल न भेजे। यदि बच्चे में सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण है तो उसे आराम करने दें। इसके अलावा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: सुगम संगीत का पहला गीत सुनिए श्रोताओं आशा भोसले और अदनान स्वामी की आवाजों में।

0: सुगम संगीत का अगला गीत सुने श्रोताओं आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाजों में।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

जी हाँ दोस्तों, कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ। हम तो आपके सीने में धड़कते हैं, बस आप आंखें बंद करके उस धड़कन को सुनिए। हम आपकी धड़कन के साथ हैं और आप हमारी धड़कन में धड़कते हैं। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लीजिए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में दाग दी फायर फिल्म का ये गीत।

जी हाँ साहिबान, अभी अभी जो हैं आप अपने ऑफिस पहुँचे हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर पहुँचे हैं, मगर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है आपको रोड पर, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ज़बरदस्त हो गया है। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि मौसम चाहे गर्म हो पर आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से गाने वो होंगे जो आपके सीने में धड़कते हैं। पुराने ज़माने के कबूतर तो जो है वो ख़त लेकर जाते थे, पर हमारे यहाँ लकी कबूतर जो भी आप तक पहुँचा है उड़ते उड़ते, जो आपको नाचने पे मजबूर किया है, तो ऐसे ही हमारे गाने जो हैं दिल में उतरेंगे, जो आपके सीने में धड़कते हैं, लेकिन आपको डांस करने पर भी मजबूर करेंगे, डांस ऑन द फ्लोर। तो अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांधे रखिएगा, क्योंकि अगला गाना कुछ ऐसा ही है जो आप को थिरकने पे मजबूर कर देगा। ये गाना हमने लिया है वेलकम फिल्म से, आवाज़ें हैं आनंद राज आनंद और साथियों की, और गीत और संगीत भी है आनंद राज आनंद का। तो आइए ना आप और हम मिलकर लुत्फ उठाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जब बात हो स्वैग की तो इस गाने का कोई मुकाबला नहीं है। वेलकम फिल्म का गाना जो है अभी आप तक पहुंचा था आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से, जो सीधे आपके दिल में उतरा है। और इसी तरह के मस्ती भरे बीट पर जो है वो गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर। ये जादू जो है आपके सर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि अगले पायदान पर जो गाना आ रहा है हम आपके लिए बजाने वाले हैं, प्ले करने वाले हैं, वो हमने लिया है आईना फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और ज्वाली मुखर्जी की। गीत लिखा है समीर ने और धुन बनाई है दिलीप सेन समीर सेन ने। और जब तिनता तिनक दिन दिन तिनता ये बीट जब बजती है तो क्लासिकल हो या वेस्टर्न, कदम तो अपने आप थिरकने लगते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, जब प्यार होता है ना तो उसका रंग जो है दुनिया में एक अलग तरह का होता है, और दुनिया का हर रंग जो है वो फिर खूबसूरत लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे आज के गाने का, है ना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से, और ये गाना जो है उन सभी हमारे कपल्स के नाम समर्पित था जो कि एक दूसरे की आंखों में अपना सारा जहान देखते हैं, है ना। और वैसे भी जो है ये गाना, चाहे शादी का फंक्शन हो या और कोई खास पार्टी, इस गाने के बगैर जो है महफिल अधूरी रहती है। चलिए एक छोटे से अंतराल के बाद ऐसे ही कुछ और गाने हम आप तक पहुंचाते हैं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: कैसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और ये गाना है सुखिंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र। आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

ना संघर्ष ना तकलीफें, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ साथियों, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से फिल्म संगीत में वो गाने आज हम आपको सुनवा रहे हैं जो आपके सीने में धड़कते हैं और जो आपको थिरकने पर मजबूर भी कर देंगे। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं एक पायदान और आगे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिलीप सेन और समीर सेन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गाना। आवाजें हैं अभिजीत और साथियों की, फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

जी हाँ दोस्तों, 19 के दशक में जब ये गाना जब भी बजता था तो जो बैठे होते थे वो खड़े हो जाते थे, और जो खड़े होते थे वो नाचने लग जाते थे, क्योंकि उस समय हिट फिल्म का ये हिट गाना जब भी बजता था लोगों को पैर जो हैं वो खुद ब खुद थिरकने लग जाते थे। 19 का दशक जो है वो संगीत के लिए जाना जाता है, और अब जो हम गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, वो आपको बैठने नहीं देगा। आप चाहे थक चुके हैं और बैठना चाहते हैं फिर भी बैठने नहीं देगा, क्योंकि ये गाना हमने लिया है हमसे है मुकाबला फिल्म से। जी हाँ, संगीत है ए आर रहमान का, और

गीत लिखा है पी के मिश्रा ने। आवाजें आप इसमें सुनेंगे मानो और स्वर्णलता की। पूरे शरीर में थिरकन होने लगी है, ये गाना जब भी बजता है ऐसा ही होता है।

साथियों, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से हम आपको गाने वही सुनवाते हैं जो होते हैं आपके दिल के करीब, जो होते हैं आपकी धड़कन के करीब, जिन्हें आप गुनगुनाना चाहते हैं और जिन पर आप थिरकना चाहते हैं। ऐसा ही अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है आज का गुंडा राज फिल्म से। इस गाने में आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

जी हाँ दोस्तों, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, ये जो हैं 19 के दशक की आवाज़ें, समा बांधने के लिए है। ऐसा लगता है कि ये आवाज़ें धरती पर उतरी हैं। और इस गाने में जब आप वीडियो फिल्मांकन जब आप देखते हैं, तो उसमें मीनाक्षी शेषाद्री और चिरंजीवी का शानदार डांस, जो खुद ब खुद जो है थिरकने पर मजबूर कर देता है, और जो नाचना नहीं जानते वो भी ठुमका लगा ही लेते हैं। ये 19 की जो है, 90 के दशक की जो है, हमारी सुनहरी यादें हैं। चलिए बढ़ते हैं एक पायदान और आगे फिल्म संगीत में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानम समझा करो फिल्म का ये गाना।

अनु मलिक और हेमा सरदेसाई की आवाज़ें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है जानम समझा करो। बहुत ही सुंदर शब्दों में जानम समझा करो।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल की बात ज़बान पर आती है, जब हम सामने वाले को अपनी बात कहते हैं और वो समझ नहीं पाता, तो ज़बान से यही निकलता है कि जानम समझा करो, है ना। ये इशारों को समझने वाली बात है, और इसी शब्द को लेकर ये गाना बुना गया, इसी भाव को लेकर ये गाना बुना गया। और जब प्यार की खुशबू आती है, दिल धड़कते हैं और नज़रें मिलती है, तो ये गाना धड़कन के साथ खुद ब खुद धड़कने लगता है। चलिए फिल्म संगीत में बढ़ते हैं एक पायदान और आगे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में औजार फिल्म का ये गाना। शब्द रचना है राहत इंदौरी की और संगीत है अनु मलिक का।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में दिल से फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत हमारी आज की सभा में बस यहीं तक। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कोहिनूर लंगा पार्टी की गाई लोक रचनाएं।

लोक संगीत आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कोहिनूर लंगा पार्टी की गाई चुनिंदा लोक रचनाएं।

साथियों, पैदल यात्री हमेशा लाल बत्ती जलने पर ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। जो यातायात के नियमों का मान करेंगे, सब उनका सम्मान करेंगे। जो यातायात सुरक्षा नियम अपनाते हैं, वो ही सभ्य नागरिक कहलाते हैं। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। साज आवाज और अल्फाज के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की गाई गैर फिल्मी रचनाएं।

सोनू निगम की गाई खैर फिल्मी रचनाएं हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत में। लीजिए सुनिए अगली खैर फिल्मी रचना।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। साज, आवाज़ और अल्फाज के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की गाई गैर फिल्मी रचनाएं। साहिबान, सोनू निगम की खूबी यह है कि वो हर तरह का गाना गा सकते हैं, चाहे मस्ती भरा गीत हो, देशभक्ति का जज्बा हो या फिर दिल टूटने का दर्द। उन्होंने अपनी आवाज से गानों में जान डाल दी है। अब वक्त है उनकी गायकी में एक और अलग रंग का मजा लेने का। पेश है उनका एक और सदाबहार गीत, गैर फिल्मी रचना है ये।

0: साहिबान, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की गाई गैर फिल्मी रचनाएं। हुजूर, सोनू निगम की आवाज में जो जो ठहराव और जज्बात है वो कमाल का है, और वो एक बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि उन्होंने संगीत की हर शैली में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। चाहे सुगम संगीत के गीत हो, गज़लें हो या तेज़ रफ्तार वाले पॉप गाने, उनकी आवाज़ का जादू हर जगह सिर चढ़कर बोलता है। और उनके गाए गीतों की खूबी ये है कि वो कभी पुराने नहीं होते। हर बार जब हम उन्हें सुनते हैं तो वे हमें अपनी किसी खास पल की याद दिला देते हैं। कार्यक्रम के आखिर में उनका गाया ये गैर फिल्मी नगमा।
1: बेखबर देखता हूँ जिधर, तू ही आए नजर, अपना बना ले मुझे, दिल में बसा ले मुझे, तू है मेरी रूहे सफर, रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज़ पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के मुक्कावरीपल्ली गांव से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इधर राजस्थान में अभियान की राज्यस्तरीय शुरूआत ब्यावर जिले के देवमाली गांव से हो रही है। पंचायत समिति

0: में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीबीजी रामजी का शुभारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां से जल जीवन मिशन के तहत लगभग 418 करोड़ रुपए की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही 78 नई पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को और आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। अलवर में अब कचरे से बिजली बनाई जाएगी। राजधानी जयपुर के बाद अलवर प्रदेश का ऐसा दूसरा शहर होगा जहां वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के तहत कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। अलवर नगर निगम ने इसके लिए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। संयंत्र में रोजाना लगभग 1000 टन ठोस कचरे का उपयोग किया जाएगा। इससे शहर में एकत्रित कचरे के निस्तारण में भी सहायता मिलेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड से जुड़े शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देंगे। संस्थान के दो वैज्ञानिकों को यूरोप की वैज्ञानिक संस्था सीईआरएन सर्न की एटलस परियोजना से जोड़ा गया है। ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान पहलों में से एक है। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की संरचना, सूक्ष्म कणों के गुणों और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे। भरतपुर जिले के रायपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गईं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये महिलाएं काम के लिए जा रही थीं और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घायल महिलाओं को भरतपुर के आरबीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया है जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मॉनसून इस बार सामान्य से एक सप्ताह की देरी से प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बरसात की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले पूरे हफ्ते जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालटल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भैया, आज आपने जानकारी दिलार यहाँ के भाई गंवार फसल री किस्मा और उन्हें जी की विशेषता है, कई कई है गंवार री किसी किस्मा आपने लेवे है और उन्हें किस्मा री कई कई विशेषता है। RGC 936 आ किस्म एक साथ है पकड़ने वाली प्रकाश संवेदनशील है। दाना जी का इंड्रा है मध्यम आकार रा हल्का गुलाबी रंग रहा करे। आ किस्म आपा खेत में भवा 80 दिनों लेर 110 दिन री अवधि रे महीने आ तैयार हो जा। और इन किस्म री विशेषता आ है के अंगमारी रोधक आ हो करे। साथ साथ झुलसा जी को रोग हुए उन्हें सहन करने री जी की क्षमता है वह इन किस्म रे महीने होया करे। और पौधारी जी की शाखा है झाड़ी नुमा होया करे। पत्ता जी का इन किस्म रा है खुरदरा होया करे। सफेद फूल इन किस्म री शुद्धता बनाई रखने में बहुत सहायक है। और एक बात है किसान भाइयों के सूखा प्रभावित जी का क्षेत्र है उन महीने आपा गवार ने जाइद और खरीफ दोनों ही टेम रे महीने आपा बा सका। आज की किस्म है इन सूज को उत्पादन है किसान भाइयों वो लंगे टंगे 8 ले 12 क्विंटल प्रति हेक्टर जी को उत्पादन है और हो जाए करे। गवार महीने आपा बात करा RGM 112 जिन आपा सूर्या गवार किया करा। आ किस्म शुष्क और अर्ध शुष्क जी का अपना क्षेत्र है उनर वास्ते बहुत ही उपयुक्त रिया करे। और दोनों ही परिस्थितियां मैंने आप बो सका। जाहिद में भी पहला आपरे कई किसान भाई बोई है और हमें खरीफ में भी आपरे बोवे है और बोई है। आ किस्म पीछे सी दिन ले 100 दिन महीने पक परी आपरे बढ़िया तैयार हो जा। और झाड़ी नुमा पौधारिया शाखा वे पत्ता खुरदरा वे एक हाथ पाके आ इन हंगो मोटी विशेषता है। हाथ किसान भाई मान लो आ किस्म भावे आपरे या भाई है तो इनसू जी को उत्पादन है वो लंगे टंगे 10 ले 12 क्विंटल प्रति हेक्टर होया करे। इन किस्म राज्य का फूल है उनारो जी को रंग है वो नीलो है और फली जी की है मध्यम लंबी भूरे रंग हुआ करे। और दाना जी का महीने भणे उनरो जी को रंग है वो सलेटी रंग रो हुआ करे। और एक खास बात है किसान भाइया इंड्र महीने बैक्टीरियल जी को ब्लाइट है उन्हें सहन करने जी की क्षमता है वह बेसी हुआ करे। इन्हीं तरह आप बात करा गवार महीने RGC 1002 आ किस्म शुष्क और जटे में कम वे बुट बहुत ही बढ़िया आ मानी जा करे। इन पौधारी जिकी ऊंचाई है वह लंगे टंगे 60 ले 90 सेंटीमीटर हुआ करे। और शाखा खूब सारी इन महीने हुआ करे। इंडी पत्तियां 3 पोलियो युक्त खुरदरी हुआ करे। और पतिरा जी का किनारा है वे कटाव लियोड़ा दिखे अपने। और फलरी जी की लंबाई है वह 4.5 ले 5.0 सेंटीमीटर इन बीच में हुआ करे। अभी बेगी पकने वाली किस्म है 80 ले 90 दिन महीने RGC 1002 पाक जाए करे। और पैदावारी बात आवे किसान भाइयों तो लंगे टंगे 10 ले 13 क्विंटल जो को उत्पादन है वो प्रति हेक्टर हो जाए करे। और साथ आप बात करा कि भाई दाणो रो वजन कितो वे तो 100 दाणो रो जी को वजन है वो लंगे टंगे 10.10 ले 3.57 ग्राम। और दाना रो जी को रंग है वो सलेटी रंग रो होया करे। इन किस्म रे महीने दाना रो महीने एंडोस्पर्म री जी की मात्रा है वह 35 ले 37% और प्रोटीन री जी की मात्रा है वह 28 ले 32% होया करे। हम गवार महीने RGC 1003 भी किस्म है पौधा शाकायुक्त होया करे। पतियां खुरदरी और किनारा जी का है बिना दांतेदार होया करे। आ फसल पीछे सी दिन लेर 92 दिन महीने आप पाक जाया करे। पौधारी जी की ऊंचाई है वह 51 ले 83 सेंटीमीटर होया करे। पैदावारी बात आवे किसान भाइयों तो 8 क्विंटल ले 14 क्विंटल जी को है प्रति हेक्टर उत्पादन होया करे। एक खास बात है कि बीज रे महीने गोंदरी जी की मात्रा है वह 29 ले 32% हुआ करे। आज की किस्म है अपने अठे शुष्क और अर्ध शुष्क जी का क्षेत्र है

पैदल यात्री हमेशा लाल बत्ती जलने पर ही जेब्रा क्रॉसिंग पार करें। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर। दिन के 1:15 हुए हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: वंदन अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो नारी वाटिका में। आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगे अपनी दो हमसफर सखियों के साथ। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
1: मैं हूँ खुशबू। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

0: सखियो कहते हैं ना कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़ी चीजों की नहीं बल्कि सही जानकारी और सही सोच की जरूरत होती है। हम अपने जीवन में रोजाना कई छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही छोटी बातें हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है।
1: और यही नहीं, खुशबू ज्ञान वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी प्रदान करता है। जब हम सही जानकारी मिलती है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन में अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बन पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा। और देखिए, स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और समय का सही उपयोग सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समय निकालें, साथ में प्रकृति से जुड़े रहें, जीवन में सुकून के पल तलाशें और अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाए, तो जीवन की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आसान हो जाती है।
1: हाँ, और हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तो आइए, इस प्रोग्राम में आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि कुछ नया सीखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: तो सखियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों पर जो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन पूर्णिमा, पहले मुझे एक बात बताइए, आज आप इतना थकी थकी सी क्यों लग रही?
1: अरे 1 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को सुबह उठाना, वो इतना मुश्किल से उठते हैं ना, क्या बोलो। रात को लेट सोते हैं, फोन या टीवी देखते हैं, और लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं और सुबह परेशान करते हैं। इसलिए इसलिए थोड़ा सा देख सकते हो कि यार थकान सी तुम फेस पे है।
0: देखिए, वो तो है कि जब बच्चे घर में होते हैं ना, और ये जो समय आता है 1 जुलाई के बाद में, स्कूल्स का लोड, किचन का लोड डबल हो जाता
1: वो
0: है।
1: छुट्टियों में इतने आराम से वो रहते हैं ना कि वो सुबह का जो उनका शेड्यूल है वो पूरा खराब हो चुका होता है, और वो जब देर रात तक वो टीवी और फोन देख के सोते हैं तो उनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो ही बिगड़ता चला जाता
0: गड़बड़ा
1: है,
0: जाता है
1: गड़बड़ा
0: जी,
1: जाता
0: तो
1: है।
0: उसी का असर है कि आज आपके चेहरे पे दिख रहा है। देखिए सखियों, आज के दौर में बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जितना उनकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब ये सब डिजिटल गैजेट्स होते हैं तो सोशल डेवलपमेंट पीछे छूट जाता है।
1: और ये जो सोशल डेवलपमेंट है वो सोशल स्किल्स जो है वो बच्चे को दोस्त बनाने, या फिर कुछ छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने, या फिर किसी की मदद कैसे करनी है, या किस टाइम पर आपको लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, इन सारे जो स्किल्स है उसको डेवलप करता है।
0: देखिए पूर्णिमा, हमें भी याद होगा ना, हम भी हमारे जब
1: हाँ
0: बचपन में होते थे तो शायद मोबाइल्स वगैरह ये हम नहीं जानते थे क्या होते। हम लोग ना खेलते थे बाहर सड़कों पर, ऐसे ही घूमते थे, और अक्सर कभी ऐसा होता था ना कि कभी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती थी या कुछ कहा सुनी हो जाती थी, तो वो 10-15 मिनट में ही सुलझ जाती
1: और
0: थी।
1: वो जो लड़ाई झगड़ा है वो कभी आपके घर तक नहीं जाता था, वो अपन
0: बिल्कुल
1: आपस में ही सुलझा लेते थे। पर आजकल के झगड़े तो पहले घर आते हैं फिर बच्चे से बाद में सुलझाते हैं।
0: हाँ, और उसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट होते हैं वो ये कहते हैं, नहीं बेटा आप तो घर पे ही रहो, घर पे ही आप खेलो, आपको ये दे देते हैं, आपको ये खिलौना दे देते हैं, आपको ये वीडियो गेम प्लेयर दे देते हैं, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चा जो कनेक्ट होता है सब फ्रेंड्स से, सोशल जो भी डेवलपमेंट उसका होना चाहिए वो नहीं हो पाता है।
1: हाँ, और सोशल डेवलपमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना आज हम स्कूल बच्चों को भेज के जब एजुकेट करते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट का भी जो नॉलेज है वो बच्चों को आज के जो दौर में खुद को स्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: और ऐसे में काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत शाय नेचर के होते हैं, शर्मीले होते हैं, तो कुछ को काफी सारी सिचुएशन से भी डर लगता है कि भाई मैं इन सब के साथ में घुल मिल पाऊंगा या नहीं। देखिए स्कूल भी जब बच्चे जाते हैं ना, हम लोग एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं बच्चों को, तो उनको काफी डर रहता है कि नहीं मैं वहां एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, या फिर मेरे दोस्त मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है कि बच्चे को इस टाइम पे मेंटली किस तरीके से हम हैंडल करें।
1: और बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं ना उनको भी मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स भी रो रहे होते हैं आज के टाइम में कि यार हम बच्चों को कैसे भेज दें, वो वहाँ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी उन खुद का डेवलप करके उनको इतना स्ट्रांग करना है कि वो आज
0: जी
1: की सोशल लाइफ में खुद को स्टैंड कर पाए।
0: यानी कि पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे में सोशल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सखियो, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाती हैं ये नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: रहमान।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर गुमान राम विश्नोई, पीडियाट्रिशियन जालौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं?
2: लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं, ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें। बारिश में

0: भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाए और गीले जूते मुझे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल न भेजे। यदि बच्चे में सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण है तो उसे आराम करने दे। इसके अलावा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचे।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी नारी वाटिका में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों को हमें सोशल जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा सोशली डेवलप्ड नहीं होगा वो खुद का विकास तक नहीं कर पाएगा।
3: और देखिए सखियो, सोशल स्किल वे बुनियादी क्षमताएं होती है जो बच्चों को दूसरों से जोड़ने, संवाद करने या फिर सामाजिक माहौल में सफल होने में मदद करती है ना। और ऐसे में ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर बातचीत करना या टीम में काम करना जैसे गुण भी शामिल होते हैं। अच्छा पूर्णिमा, ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये न केवल स्कूल और दोस्ती के लिए ज़रूरी होते हैं बल्कि इन फ्यूचर में आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी जॉब कर रहे हैं या फिर आपके जो रिलेशंस होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस।
2: क्योंकि ऑफिस में अगर आप किसी से बातचीत नहीं करोगे तो आप वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते
3: वो
2: तो बच्चों को बचपन से ही अगर हम डेवलप करेंगे तो जब वो स्किल्स डेवलप होगी तो बड़े होकर उनकी जो सक्सेस है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा उसमें योगदान देगी।
3: और देखिए आज का तो ज़माना ही मल्टी टैलेंटेड का है ना। हम पेरेंट्स सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये भी आए लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट वो पीछे छोड़ देते हैं।
2: कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम किसी शादी में जा रहे हैं या फंक्शन में जा रहे हैं और अपने बच्चे को हम घर पे छोड़ के जाते हैं कि यार इतनी गर्मी में वो वहाँ क्या करेगा, हम लोगों के बीच में वो वहाँ क्या करेगा, पर हम ये नहीं समझते कि इससे उसका सोशल डेवलपमेंट है वो रुक रहा है।
3: और देखिए जो फैमिलीज होती है ना, वो फैमिलीज की जो गैदरिंग होती है, मिलना जुलना होता है, वो किसी फंक्शंस में ही होता है। और ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को लेकर ही नहीं जाओगे तो आज से 10 साल बाद उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये कौन है, या फिर ये मेरे अंकल आंटी है, ये मेरे मौसा मौसी है। तो बच्चा कहीं ना उनको पहचान भी नहीं पाता है वो। कई सालों बाद में अच्छा आप मेरे ये रिलेटिव है। तो ये चीजें जब हम बच्चों को शुरू से ही नहीं सिखाते तो वो सीख ही नहीं पाते।
2: इसलिए हमेशा हमें अपने बच्चों को हमें अपने साथ रखना चाहिए, कहीं पे भी हमें लेके जाना चाहिए जिससे वो 10 लोगों से मिले, बातें करे और वो कुछ ना कुछ उनसे सीखे। और यही नहीं, कई बार होता है कि हम बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं भेजते हैं कि ना धूप बहुत है या वो बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं या ऐसा है, या बच्चों को अपन रिस्ट्रिक्ट करके घर में रखते हैं कि हम तुझे गेम्स दे देंगे खेलने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बच्चों को जितना बच्चों दूसरे बच्चों के साथ जितना खेलेंगे उतना ही उनका सोशल डेवलपमेंट होगा।
3: अच्छा एक बात ये भी है कि बच्चों के जो सोशल स्किल्स होते हैं वो उनके विकास के विभिन्न चरणों में भी बदलते हैं ना। देखिए अगर बच्चा छोटा होता है, 5 साल तक होता है, तो उसकी अपनी सोशल नीड्स अलग होती है, 5 से 12 साल तक अलग होती है। और उसके बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी सोशल लाइफ उनकी रहती है। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे भी रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हर उम्र के बच्चे को अलग अलग सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
2: और इसीलिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए, उनके सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर और सेफ रहेगा।

0: खुशबू, अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया है उनको घुमाने ले जाना।
1: हाँ देखिए, इसमें ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे नेचर के साथ भी जुड़ते हैं, तो उनका
0: हाँ,
1: डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है।
0: और जब मॉनसून हो और साउथ इंडिया अगर घूमना हो तो साउथ इंडिया सबसे अच्छी जगह है मॉनसून में घूमने जाने की।
1: क्या बात कही। और देखिए, ये जो हमारा जो सूर्यनगरी है ना, यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो हमें तो चाहिए कि भाई हम कहीं अच्छी अच्छी पहाड़ वाली ठंडी जगह के अंदर जाएं, और ऐसे में साउथ इंडिया से बेटर ऑप्शन शायद कोई नहीं।
0: हाँ, क्योंकि साउथ इंडिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पे जो बारिश के टाइम जो झरने हैं, जो नदियाँ हैं
1: जी
0: वो, और जो समुद्र है वो बहुत ही सुंदर लगता है।
1: और देखिए, जब सुंदरता मन में बसी रहती है ना और आंखों में बस जाती है, तो शायद उससे बेटर चीज कोई हो ही नहीं सकती। और देखिए, इस व्यू के साथ ना हम हमारा पूरा साल निकाल सकते हैं।
0: हाँ, अगर आप साउथ की सबसे अच्छी, अगर बात करो सबसे अच्छी हिल स्टेशन की, तो कुर्ग हिल स्टेशन बहुत ही फेमस है, जो कि कर्नाटक
1: क्या
0: में है।
1: बात है।
0: कर्नाटक के ये जो कुर्ग है वो बहुत ही एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यह जगह, यहाँ पे घने पहाड़ और धुंध से घिरी हुई, चारों तरफ उसकी धुंध और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मॉनसून के समय में यह जगह, इस जगह पर प्राकृतिक जो सुंदरता है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कुर्ग एक प्राकृतिक प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर जगह बताई है आपने। और
0: हाँ,
1: एक और जो नेक्स्ट जगह है पूर्णिमा, वो है हम्पी। बहुत कम लोगों को ये पता है, कर्नाटका में ही है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस जगह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में रखा है,
0: हाँ
1: तो इसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे शानदार खंडहर है, अद्भुत आकर्षण का

0: इंद्र जिन्हें माना जाता है। और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के इतिहास को जानने के लिए आते हैं, स्पेशली जिनको रुचि रहती है ना कि हम पुराना
1: हिस्टोरिकल
0: आर्किटेक्ट।
1: मॉन्यूमेंट है तो
0: हाँ
1: उनको जिसमें जिसको इस मॉन्यूमेंट पे इंटरेस्ट होता है,
0: जी
1: हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, उनको बहुत अच्छी लगती है
0: हाँ, तो
1: जगह।
0: एक मॉनसून के अंदर जो ये प्लेस है ना, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देता है।
1: हम और भी ऐसी जगह की बातें करेंगे लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी अपनी नारी वाटिका में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मॉनसून के सीजन में हमें साउथ इंडिया में कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए
6: जी।
5: और उनमें से एक है महाबलीपुरम। ये देश का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये पहले एक बंदरगाह हुआ करता था, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक ऐतिहासिक

0: पहचान भी है और इसको 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया। अगर आप इस जगह पे जाएंगे तो आपको कई सारे मंदिर और दार्शनिक स्थलों का दीदार होगा और इस जगह पे आपको वास्तुकला का बहुत ही सुंदर और अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा।
1: क्या बात है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट जो टूरिज्म स्पॉट है वो है कोची। जी हाँ सखियो, कोची जो है वो भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है और एक ये ऐसा एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पर अगर आप आते हैं ना तो यहाँ से को रिलेटेड जितने भी अदर आपकी जो टूरिज्म स्पॉट है आप उनको आसानी से अप्रोच मिला सकते हैं ना। जैसे अगर आप कोची आ गए तो
0: सेंटर प्लेस कह
1: सेंटर
0: सकते
1: प्लेस
0: हैं।
1: है ना, तो वहां से आपको एक बहुत बड़ी द्वीपों की श्रृंखला आप देख सकते हैं। और इसी वजह से पूर्णिमा यहाँ पे बहुत सारे सैलानी हैं जो हर साल आते हैं और काफी संख्या में आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो सोलो ट्रैवलर है ना, जिन्हें अकेले घूमने का बहुत शौक है ना, जो भरोसे नहीं रहते कि भाई हम हमारे साथ कोई चलने के लिए हो राजी तो हम जाए, तो वैसा नहीं है। सोलो ट्रैवलर्स भी है जो खूब सारे यहाँ पर आते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं।
0: और इसी के साथ साथ अगर एक और स्पॉट की हम बात करें तो वो है बैंगलोर, जो कि है कर्नाटका में। बैंगलोर हम लोगों को कई वजहों से जाना जाता है और इस जगह पर आकर आप घूमने के साथ साथ अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए भी आ सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर सिटी है। और यहाँ पे मानसून के समय में यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर से बारिश होती रहती है और मौसम बहुत ही सुहावना होता है, और इसमें अगर हम बाहर घूमते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे खूब सारे पार्क्स हैं, बहुत अच्छे महल हैं और बहुत अच्छे से उनको उन्होंने डेवलप करके रख रखा है, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति को यहाँ पे संजो के रख रखा है। तो ऐसे ही अगर मानसून में आपको कहीं पे भी घूमने जाने का मन है तो आप साउथ इंडिया एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।

0: पूर्णिमा देखिए, घूम के जाने जाकर वापस आने के बाद में ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं हमारी स्किन केयर, है ना,
1: सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, सब कुछ करना पड़ता
0: सब
1: है.
0: कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं ना, जो अब अगर हम देखें कि यहाँ का जो क्लाइमेट है और हम बाहर घूमने जा रहे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ऐसे में जो हमारी स्किन होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है.
1: और हमें ऐसे ही कुछ भी अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते हैं. कई बार जैसे हमें लगता है कि एलोवेरा, जो कि प्राकृतिक, उसके अंदर औषधि माना जाता है, उसके अंदर अगर हम कहें कि हम हमारी स्किन पे, हमारे बाल पे, या हमारे जो पाचन संबंधित जो तंत्र है, उस समस्याएं भी हैं, उसके लिए भी हम एलोवेरा यूज़ करते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है.
0: देखिए, वो तो हम लोगों को काफ़ी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपको स्किन रैशेज हो रहे हैं ना, आप कहीं बाहर जाकर आए, कोई एलर्जी हो गई है, तो आप फटाफट से एलोवेरा जेल लगा लो तो सब सही हो जाएगा.
1: कई बार हम ऐसा होता है कि धूप से आते हैं और हमारी आंखें जल रही होती है, तो बोलते हैं कि यार एलोवेरा जेल लगा के आप फेस वॉश कर लो, आंखें वॉश कर लो, आपको बहुत आराम मिलेगा.
0: जी.
1: और ऐसा होता भी है कि हमें ऐसा करने से हमें आराम भी मिलता है, पर कई बार क्या होता है कि एलोवेरा जेल भी कई बार हमें नुकसान पहुंचा देता है.
0: देखिए, हर चीज़ के अगर अपने फायदे हैं तो नुकसान भी है, और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एलोवेरा जेल अगर आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही होती है तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं.
1: हाँ, मुहासे होने लग जाते हैं, या फिर जलन होने लग जाती है, या फिर हमारे जो पोर्स हैं उसके अंदर हमको पेन होने लगता है, जो चेहरे पे जो पोर्स है उसको भी हमें दिक्कत होती है. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखती हैं एलोवेरा जेल लगाने के बाद. अगर आपको एक बार करने से या दो बार यूज़ करने से अगर आपको ये चीज़ फील होती है, तो हमें इसको देखना चाहिए कि हमें एलोवेरा जेल से नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है.
0: देखिए, वो तो यही चीज़ है पूर्णिमा, कि अगर आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल, उसका एक पैच टेस्ट जो है वो हमेशा करें हम हमारी स्किन पर, पहले एक छोटी जगह पर लगाकर देखिए कि उससे कोई एलर्जी है या फिर नहीं है, और इसके बाद ही आप अपने फेस पर उसे अप्लाई करें, ताकि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव इफेक्ट का, साइड इफेक्ट का सामना
1: जी,
0: नहीं करना पड़ेगा.

0: हम बात कर रहे थे हमारी स्किन की केयर की, तो स्किन
1: जी
0: के साथ साथ हमें हमारे जो और भी कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और उसमें से सबसे अच्छी और सबसे प्यारी है हमारी आंखें।
1: और देखिए, घूमने की बातें करिए, स्किन केयर की बातें करिए, तो आंखें कैसे पीछे छूट सकती है। और
0: हाँ
1: आंखें जो होती है ना, वो हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है पूर्णिमा, की कई बार हम इस इम्पोर्टेंट हिस्से के साथ भी रिस्क ले लेते हैं।
0: अरे जब हमारी आंखों पे चश्मा लग जाता है तो हमें लगता है कि यार हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं और हमें ना कुछ और करना चाहिए, तो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं, वो हमारे चश्मे का एक विकल्प की तरह हम उसको यूज करते हैं।
1: लेकिन इसको आप परमानेंट विकल्प तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि
0: हाँ
1: ये आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और आजकल तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हैं, या फिर हमारी खुद की शादी है, तो हमें लगता है नहीं, चश्मा नहीं होना चाहिए इसका, हम बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस।
0: खुशबू, पता है कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं,
1: हाँ,
0: जिससे हमारे चेहरे का एकदम लुक जो एकदम चेंज हो जाता है,
1: चेंज हो
0: डिफरेंट
1: जाता
0: हो
1: है,
0: जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो हम
1: बिल्कुल।
0: कई बार शौक के लिए या कई बार हम डिफरेंट लुक के लिए भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर लेते हैं, और इसको जब यूज करते हैं तो उसको सोल्यूशन में, प्रॉपर उसको सोल्यूशन में रखना चाहिए,
1: जी
0: उसको सोल्यूशन में चेंज करते रहना चाहिए।
1: जी
0: और हम वो सब बिना करे अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो हमारी आंखों को इरिटेशन होने लगती है।
1: यानी आपके कहने का मतलब है कि हाइजीन बहुत जरूरी है ना, अगर आप
0: हाँ
1: कांटेक्ट लेंस का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कांटेक्ट लेंस यूज करने का ऑप्शन लोगों को इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये हल्के होते हैं, है ना, पहनने में बहुत आसान होते हैं, आप खुद से ही लगा सकते हैं। और इसके अलावा जैसा आपने बोला, लुक में भी स्टाइलिश लगते हैं ना। अब आजकल तो मैं देखती हूँ पूर्णिमा, काफी सारे लोगों को कि वो डेली की लाइफ में भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं कि नहीं,
0: हाँ
1: आज हमें यहाँ घूमने जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो चलिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं, आज सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड करनी है उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब करता है हमारी आंखों को, और एक टाइम के बाद में ऐसा होता है ना कि कॉन्टैक्ट लेंस हमारी जो रियल आईज का जो रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, उसको डैमेज कर देता है।
0: हाँ और इसको यूज़ करते वक्त हमें बहुत सारी सावधानी भी बरतनी चाहिए। कभी कभी लेंस जो है वो हमारी आंखों से निकलता नहीं है और ऐसा लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है या हमारे अंदर कहीं चला गया
1: फंस
0: है,
1: गया
0: पर वो
1: है,
0: अंदर कहीं जाता नहीं है, वो हमारी जो पलके हैं उसके अंदर ऊपर जो है वहाँ पे चिपक जाता
1: चिपक
0: है,
1: जाता है।
0: क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, हमारी आँख की पुतलियों की तरह ये रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो गया कहाँ है। इसलिए हमें हमेशा उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ है, और हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि हम घबराहट से ना इधर हाथ डाल रहे हैं आंखों में, उधर
1: हाँ,
0: हाथ
1: और
0: डाल रहे
1: रब
0: हैं,
1: कर देते हैं, हम
0: रब
1: आईज
0: कर
1: को ना
0: देते हैं।
1: मसल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कांटेक्ट लेंस होता है ना, वो अंदर की आई को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सखियों, अगर आप भी कांटेक्ट लेंस का यूज करते हैं, अच्छा है इसे यूज करना, लेकिन इसके साथ में जो है थोड़ी सी सावधानियां रखना जरूरी होता है कि अगर लेंस कहीं अटका हुआ है तो आप उसमें लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालें ताकि वो आसानी से धीरे धीरे खिसक जाएगा और फिसल के नरम होकर वो आंख से अपने आप बाहर आ जाएगा, या फिर आप साफ उंगली से जो है वो

0: धीरे धीरे खींचे लेंस को हल्के से ताकि वो आंख के किनारे पर भी आ जाए तो आप उसे निकाल सकते
1: और
0: हैं।
1: कई बार ऐसा होता है ना कि पहले ही आंख से गिर जाता है और हमें लगता है कि वो हमें पता नहीं चलता और हमें लगता है कि वो हमारे आंख के अंदर ही है, और हम उससे कई बार हमें उससे जलन होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, या फिर कई बार हमें चुभन भी महसूस हो सकती है और हमें और वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर ही कहीं फंसा हुआ है। तो इसमें अगर ऐसा अगर है तो हमारी आंख को पूरी तरह से हमें सामान्य रखना है, और हमें ऐसा महसूस देख सोचना है कि अगर हमारे लेंसेज नहीं होते और हमें वही धुंधलापन फील हो रहा
0: जी
1: है तो
0: हाँ।
1: हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी आंखों में लेंसेज नहीं है, वो गिर गए हैं।
0: और अगर इतनी सारी कोशिशों के बाद में भी आप इसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे में आपको और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, खुद के एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। बेटर ऑप्शन है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर लंबे समय तक लेंस आपकी आंखों में फंसा रह सकता है तो इससे क्या होता है ना कि आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
1: और ये हमारी कॉर्निया को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले जितना हो सके आंखों को रेस्ट दें, रगड़े नहीं, और डॉक्टर की मदद से लेंस बिना नुकसान के निकाला जा सकता है।

0: सखियो, हम कई बार ये सोचते कि हम फ्यूचर में क्या होगा, हमारे साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, हम क्या कर पाएंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, और इस सोच में हम कई बार आज जो हमारा प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं हम खराब कर रहते हैं। हम पूरे टाइम इसी चिंता में रहते हैं, यार फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और इस चक्कर
1: जी
0: में हम आज जो जी रहे हैं वो हमारा खराब हो जाता है।
1: हाँ सखी, देखिए भविष्य की फिक्र तो जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप अपने आज को ही भूल जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि आप, हम तो यही कहेंगे कि अपने आज को जिए और भविष्य की चिंता को कहीं ना कहीं छोड़ दें। और अपने आज को अगर आप अच्छे से जिएंगे तो शायद आपका भविष्य भी सुधर जाएगा।
0: और भविष्य तभी सुधरेगा जब हम अपने आप को समय दें, अपने खुद की चिंता करें और अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करें। कल तो कल आएगा ना, कल की चिंता हम आज क्यों करें?
1: जी बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने। तो ऐसे में कल की चिंता हम कल पर छोड़ देते हैं, आज को जीते हैं। और आज को अगर जीना है, खुल के जीना है, तो बस इसी समय से जीना है।

0: सखियों देखी तो परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं।
1: चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सबको सब कुछ बता दो।
0: खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का कि जियो और जीने दो।
1: तो सखियों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और आज की नारी वाटिका का सफर जो आपने तय किया था वो हमारी टेक्निकल टीम हम आपसे रूबरू करवा देते हैं। HPT पे थे विक्रम सिंह भाटी और चंद्र राम पटेल।
0: जी हाँ सखियों, कंट्रोल रूम से हमारे साथ ही सुनील जयपाल, और कंसोल से आप तक इतने प्यारे प्यारे गाने पहुंचाए बलवीर ने,
1: और प्रोग्राम प्रोड्यूसर है मनीष सोलंकी, और हम दो रेडियो सखी आपके साथ, मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ
0: और मैं थी खुशबू। तो लेते हैं अब आपसे विदा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारीवाटी का। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ज पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय

0: साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावडीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित

0: करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने।

0: हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझ

0: की महत्वपूर्ण सीख हमें दी।
1: जी
0: ऐसे रोचक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
2: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
2: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम कक्षा

0: 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
1: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
2: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
3: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
4: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
3: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
5: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
5: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
5: क्यों दे दूं?
6: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
5: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: ये खास वजह हो महाराज।

0: महाराज की जय हो,
1: महाराज की जय हो,
2: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है

0: सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूं। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।

0: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
1: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
0: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम अच्छे हैं।
3: तो बच्चों शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
4: आदित्य L1 के बारे में?
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
0: सर टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
1: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
1: जी मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
0: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
1: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
0: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
0: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
1: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
0: सर आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
1: सर हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर मेरा नाम दिवाकर है।
3: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
4: जी सर।
3: जी दिवाकर आपका प्रश्न क्या है?
0: सर मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक

0: सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर। सर आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
2: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
2: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
1: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
2: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
4: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब प्रारंभ होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी से।

0: स्वागत है आज का इस प्रोग्राम में, जहां प्रोग्राम युवाणी अब एंजॉय करेंगे। अब 5 से 6 बजे तक बहुत सारी बातें होने वाली है। गुरुवार का दिन है, मज़ा आने वाला है और प्लेलिस्ट भी क्या कमाल की है। इस आवाज़ का नाम राहुल है और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ हैं।
1: मैं हूँ दोस्तों अदिति मौर्या। आज के शो में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है राहुल, क्योंकि आज जो है कहानी स्पेशल प्रोग्राम
0: बिल्कुल,
1: रहेगा,
0: कहानी स्पेशल
1: तो
0: रहेगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए हम अच्छी सी कहानी भी लाने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। जैसे वर्ड ऑफ द डे रहेगा हमारे सेगमेंट में, और हम एक खास शख्सियत से भी मिलाएंगे जिनकी इस कहानी जो है इंस्पायरिंग है काफ़ी।
0: जी बिल्कुल, उस शख्सियत से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। क्या कुछ बातें रही, क्या कुछ स्पेशल उनकी लाइफ का जो हिस्सा था, किस तरह से गुजरा। और उसके साथ ही साथ प्रोग्राम युवाणी है तो स्पोर्ट्स अपडेट भी बिल्कुल आपके सामने जाहिर होगी। फिलहाल के लिए आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। प्रोग्राम युवाणी इस वक्त चल रहा है, वेलकम बैक आपका एक बार फिर से। और प्रोग्राम युवाणी चल रहा है तो स्पोर्ट्स की बातें कैसे पीछे रह सकती है
1: बिल्कुल।
0: दीदी।
1: और
0: बिल्कुल।
1: स्पोर्ट्स के लिए तो सबसे पहले क्रिकेट आता है अपने दिमाग में, तो ईशान किशन बने जो आईसीसी T20
0: T20।
1: रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन
0: बिल्कुल
1: चुके
0: सही
1: हैं
0: कहा
1: ईशान
0: आपने, ईशान
1: किशन।
0: किशन जो है वो आईसीसी T20 क्रिकेट के जो है वो रैंकिंग नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं और पहली बार बने हैं ये। और इस कड़ी में इन्होंने अपने भारतीय साथी जो कि अभिषेक शर्मा जिनका नाम है ओपनिंग बल्लेबाज, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा है और T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उनको ये बड़ा फ़ायदा मिला है। और दोनों तो भारतीय बल्लेबाजों के बीच फिलहाल इनका जो पॉइंट का अंतर है वो ज़्यादा नहीं है, 7 रेटिंग पॉइंट का ही इनका जो है वो डिफरेंस रहा है। और ये फिलहाल आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन बन चुके हैं। और एक बार इनकी लाइफ में बहुत सारे होता ना कि सबके लाइफ में फॉल डाउन आते हैं, तो इनकी लाइफ में भी आया था, लेकिन उसके बाद एक बार को तो भारत की जर्सी भी चली गई थी भैया, टीम स्क्वाड में इनका नाम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद इनका जो कमबैक हुआ वो हम सभी को याद है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन हर बार हर मैच में बॉलिंग माफ़ कीजिएगा बैटिंग के थ्रू, फील्डिंग के थ्रू, स्पेशली कीपिंग के थ्रू जो हमें देखने को मिलता है वो बड़ा ही लाजवाब देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल। और राहुल, अगर क्रिकेट के साथ हम फुटबॉल को इंक्लूड नहीं करें तो ये गलत हो जाएगा।
0: बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड
1: तो
0: कप भी चल रहा है ना।
1: हाँ बिल्कुल। और तो फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया है और राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया
0: बिल्कुल
1: उन्होंने।
0: सही कहा आपने, फीफा के राउंड ऑफ 32 मैच में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16

में जो है वो एंट्री मार ली, और मैच में सेनेगल ने जो है वो 85 यानी 85 मिनट तक 2-0 की बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन बेल्जियम ने आखिरी कुछ मिनटों में वापसी करते हुए जो है वो जीत दर्ज कर ली। और बेल्जियम की तरफ से पूरी टिलेमांस ने जो है वो दो, और रेमेलू लुकाकू ने एक गोल किया, जिसकी बदौलत जो है वो बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और राउंड 16 में प्रवेश यानी एंट्री मार ली। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने, और अगला गाना आपके नजरिए रहा साहब।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रीट 2025 भर्ती परीक्षा में पास आउट अभ्यर्थी धर्मेंद्र जानी से राहुल की फोन आउट बातचीत, जिनकी कहानी वाकई संघर्षशील रही है। आइए सुनते हैं।
1: पढ़ाई के लिए संपूर्ण साधन नहीं था, लेकिन खुद पर भरोसा पूरा है। जब अपने चचेरे भाई का रिजल्ट आया, तब ही ठान लिया था कि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन संसाधन की कमी के चलते घर के नज़दीक खुद ने ही एक झोंपड़ी नुमा लाइब्रेरी बना ली, और वहीं से शुरू हुई धर्मेंद्र की असली कहानी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र आपका। मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मेरे पिताजी का नाम वाला राम है, गांव कालेवा, जिला बालोतरा से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मेरी स्कूली शिक्षा की बात करें तो मैंने सरकारी स्कूल गांव में की थी, कालेवा के अंदर 12वीं तक, और उसके बाद मैंने 2019 में 12वीं कर दी थी, फिर मैंने पढ़ाई एक दिन छोड़ दी थी। और 2019 से 20 तक सफर एक बार मैंने छोटा मोटा काम करने किया था, पर 2020 के बाद कोरोना आ गया, तो उसी टाइम मैं रिफाइनरी के अंदर लग गया था। 13-14 महीना मैंने रिफाइनरी के अंदर काम किया, उसके बाद अहमदाबाद चला गया था कपड़ा की फैक्ट्री के अंदर, 6 महीने वहां पर काम किया था। उस टाइम रीट 2021 का रिजल्ट आया था, तो मेरे ताऊ जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया था, तो उसी दिन मैंने मन में ठान लिया, उनको तो नहीं बताया, फिर मन में ठान लिया कि मेरे को भी अभी टीचर बनना है।

0: हैदराबाद के अंदर काम छोड़ के घर आ गया था, 2022 की बात है। वहां से मैंने 2022 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक मेरा लगातार पढ़ाई जारी रखी थी और घर पर ही तैयारी की थी।
1: धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो वजह थी, पढ़ाई आपको छोड़नी पड़ी, काम आपको ज्वाइन करना पड़ा बाहर जाकर, वो भी इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही होगी?
0: सर ये तो घर की समस्या थी कि मैं पहले पढ़ नहीं पाया था।
1: और उसके बाद बाहर गांव जाकर आपने जो है वो काम करना शुरू किया, घर पे पैसे भेजना शुरू किए ताकि घर का जीवन यापन वो है आसानी से चल सके। मैं जानना चाहूंगा उसके बाद का सफर, जब आपने वापस पढ़ाई ज्वाइन करी, क्या होता है ना कि एक चीज जब हमारे साथ छूट जाती है तो वापस उसको रीज्वाइन करना मतलब शुरुआत करने के बराबर सा होता है, बहुत मुश्किल होता है वो। तो वो मोमेंट आपने, उस मोमेंट को किस तरह से पार किया, किस तरह से आपकी जो पढ़ाई है वो वापस से शुरू हुई?
0: हाँ सर, जब मैंने वापस की थी तो पढ़ाई एकदम जीरो थी, क्योंकि 3 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़ने के बाद। फिर भी मैंने मन में पूरा विश्वास था कि मैं कर दूंगा, पूरे विश्वास के साथ उतरा था और मैंने रात दिन मतलब लगभग दिन रात यही करा कि पढ़ना है पढ़ना जारी रखी। कभी भी पढ़ाई एक दिन भी मैंने इसमें कभी पढ़ाई के लिए दूरी नहीं बनी, हमेशा कंटिन्यू जारी रखने की बजाय मेरा हो गया सर। 7 महीनों के अंदर लगने लगा कि मैं कर दूंगा।
1: सबकी लाइफ की अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें होती है। आपकी मुख्य मुश्किलें जानना चाहूँगा कि क्या वो चीज़ें थी, क्या वो चैलेंजेस थे जो आपको पार पाना पड़ा उन चीज़ों से, वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ी, उसके बिना तो सिलेक्शन होना मुश्किल था?
0: सिलेक्शन के लिए पहले तो मैंने वापस शुरू की थी, घर वालों ने कहा था पूरा सपोर्ट है, तुम तेरे पढ़ना चाहते पढ़ ले। तो मेरे ये था कि नौकरी बिना अब कुछ है नहीं, तो पूरा दिन रात माँ बाप के भी पूरे मोटिवेशन मिलता रहता कि तू पढ़। माँ बाप, घर की परिस्थितियाँ, वो सब मेरे को पढ़ने के लिए मजबूर कर देती थी।
1: आपने जब तैयारी करी तो क्या कीवर्ड्स लेकर आप चलते थे अपने दिमाग में कि यार इस तरह से मुझे तैयारी करनी है, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी और इस परीक्षा की मैं इस तरह से तैयारी करूंगा, क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्या दिमाग में चल रहा था उस वक्त?
0: शुरुआत में पीएचटीसी की तैयारी की तो मेरे को इतना कोई गाइडेंस करने वाला कोई था नहीं कि भाई ये बुक लिया वो पढ़ ले, पर एक ध्यान दिया था कि सिलेबस लिया था उस अकॉर्डिंग मैंने मेरे मन से किताबें ला के पढ़ लिया था। फिर दिमाग बता दिया कि 2-3 घंटा इनको पढ़ना, 2-3 घंटा इसको पढ़ना, वो मेरे एकदम शेड्यूल बना दिया दिमाग के अंदर। उनको मैं 6-7 महीने फॉलो किया तो बीएसटीसी का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद ही मैंने लगातार रीट की तैयारी जारी रखी थी। रीट की तैयारी करने आया था, मतलब बीएसटीसी शेड्यूल अलग था, बुक अलग थी, फिर उनको मैंने एनसीईआरटी आरबीसी ऐसे पुस्तकों को फॉलो किया था जो मेरे फायदेमंद थी। मेरे को गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था कि भाई ये बुक पढ़ ले इससे फायदा होगा, और खुद ने ये टारगेट बना के।
1: कई बार क्या होता है ना कि धर्मेंद्र जी, हमारे पास संसाधन तो खूब सारे होते हैं लेकिन मन में वो दृढ़ संकल्प नहीं होता, इस चक्कर में क्या है वो चीज़ें हमें से पीछे छोड़ती चली जाती है। आपने इतने कम संसाधन में भी तैयारी पूरी करी और पूरी कर एक एग्जाम्पल सेट करके ये बताया कि भैया कम संसाधन में, कम सुविधाओं में रहकर भी आप जो है वो किसी नौकरी की भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और उसमें पास हो सकते हैं। तो कम संसाधन में तैयारी करना भी मुमकिन है, इसे आपने जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। उस फैक्टर को लेकर चलते हुए अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए।
0: सर बात आती है कि कम संसाधन, जैसे मेरे कोई कोचिंग नहीं थी, ना कोई ऐसे एसी वाले रूम, लाइब्रेरी ऐसे कुछ नहीं थे। घर के पास 100-200 मीटर एक झोंपड़ी बनाई थी वहां पर। मेन सर बात यह कि मेरे मटेरियल कम सीमित थे, मैंने ज्यादा मटेरियल नहीं रखा था, जिस एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखी थी और उनको बार बार रिविजन करता था, वो मेरे लिए फायदेमंद रही। क्योंकि हम जैसे बाहर जाते तो आसपास के दोस्त की बुक के देखते हैं तो उनकी बुक अलग है, अपन की बुक अलग है, तो उनको देख लगता कि उनके उनमें मैटर बढ़िया होगा, वो हमारे पढ़े में बाधा आती। लेकिन मैंने मेरे किसी का नोट्स या किसी की बुक किसी को पूछा नहीं क्या पढ़ना, मैंने खुद ने कम मटेरियल लेकर वो भी पढ़ा, बार बार रिविजन किया था, उनसे मेरे फायदेमंद हुआ था। बाकी मैं घर पे पढ़ता था, जैसे कोई पैसों के ऊपर प्रेशर नहीं आता भाई आज पैसे मांगना घर वालों से, और बाकी खाने का पीने का कोई इतना जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ आता था, एकदम सुकून की जिंदगी जी रहे थे। बट ये कि मेरे को कोई गाइडेंस वाला नहीं था, फिर भी सर हो गया एकदम, मैंने खुद ने कंटिन्यू रखी थी।
1: अलग से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी लेकिन घर वालों का जो पूरा पूरा सपोर्ट था आपके साथ, बहुत बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल आप जी
0: सर। पिताजी काम पे आते थे रिफाइनरी को, उनको देख के मोटिवेशन मिलता था कि आज वो 60 साल की उम्र में मेरे लिए वो कमा रहे हैं, वो उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन होता ही नहीं सर।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सब के जो भी एस्पिरेंट्स होते

0: उनके सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? आपको क्या लगता था कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे हैं, इन पर मेरी अच्छी पकड़ है, और ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मुझे और काम करने की जरूरत है?
1: राजस्थान जीके था सर, सच वैसे 20 में फंसा नंबर, फंसा सवाल आते हैं राजस्थान जीके, उनके मेरे 48 48 क्वेश्चन राइट हो गए थे, बाकी जीट मेंस में भी मेरे राजस्थान जीके बहुत नजदीक था सर।
0: आपकी लाइफ के सबसे अहम हिस्से के बारे में जानना चाहूँगा कि यार ये जो मेरा पल था मेरे जीवन का, ये जो हिस्सा था बड़ा ही क्रूशल रहा, या फिर इस हिस्से ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिसकी बदौलत आज मैंने तैयारी करी और आज इस स्टेज पर मैं पहुँचा हूँ।
1: सर ऐसा तो कोई था ही नहीं, बट वो रीट 2021 वाला रिजल्ट आया ना, वो हिस्सा था कि मेरे को दोबारा पढ़ाई के अंदर लाने का मौका मिला, कि वो रिजल्ट में मेरे ताऊजी के लड़के का सिलेक्शन हो गया ना, तो उनको मैंने ठान लिया कि मेरे हो जाएगा, वो हिस्सा मेरे को पढ़ाई में वापस दोबारा जोड़ दिया।
0: मतलब एक मोमेंट था जो उस मोमेंट ने आपको वापस उस ओर खींच दिया कि भैया इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, सिलेक्शन तो मेरा भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे बातचीत में। जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं करी, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो आपने लगातार दी है और उसकी बदौलत आपको अपने जो एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिला। तो जितने भी एस्पिरेंट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे?
1: टेस्ट सीरीज सर जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पता चल रहा है कि हमारा पढ़ाई में स्तर कहाँ पर है, खुद का आकलन हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचते हैं, बाकी किस सब्जेक्ट में अपन मजबूत हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ाई में कमजोर है, तो उन सब्जेक्ट को मजबूत कर सके। भाई अपन एक सब्जेक्ट, मेरा राजस्थान जीके था, मैंने टेस्ट नहीं दिया वो तो राजस्थान जीके जीके पढ़ता, बाकी वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं टेस्ट देने जाता तो पता चल जाता भाई ये सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे, तो उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना था। मैंने 1 साल लगातार टेस्ट दिए थे, बाकी टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है भाई, अपन टाइम 1.5 क्वेश्चन को हम 2.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, टाइम पता चल जाता है, बाकी एग्जाम हॉल के अंदर अपन को पेपर यहाँ अटेंड करें वैसे करना, नहीं तो आप ई वाला ऑप्शन होता सर, आप कोई कोई विद्यार्थी टेस्ट देते नहीं, सीधे एग्जाम हॉल के अंदर चले जाते हैं और ई वाला ऑप्शन भूल जाते हैं, नहीं तो आप रोजाना टेस्ट देते हैं ना संडे संडे, तो पता चल जाता है कि ई वाला ऑप्शन भरना है, वो फायदेमंद होता सर, आगे वाले यहाँ पर गलतियां होती है ना, वो आगे एग्जाम हॉल के अंदर नहीं होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस आप पहले से ही करके जाएंगे तो जब आप ओरिजिनल में, जब वास्तविक में आप उस परीक्षा में बैठेंगे तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा बेशक ज़रूर मिलेगा। आप बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया पहले प्राइवेट जॉब भी आपने करी है, घर से दूर रहकर काम भी किया है, तो उसने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि यार प्राइवेट काम करना कितना मुश्किल है, सरकारी नौकरी की अहमियत कितनी ज़्यादा है।
1: हाँ सर यही मोमेंट रहा था कि प्राइवेट जॉब हम कितने दिन कर सकते हैं, लोगों की सुननी पड़ती है और वहां पर तो सर 12 12 13 13 घंटा काम करना ही पड़ता है।
0: वहाँ अपने हिसाब से नहीं चल सकते आप, वहाँ जो आपका बॉस होता है उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि यार इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसा जो मेरी तनख्वाह जो है वो इससे तो बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसा फील भी हो जाता है कई बार। चलिए जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें शेयर करी। एक लास्ट में, जितने भी लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो लोग रीट जैसी परीक्षा, शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास संसाधन की कमी है लेकिन वो मेहनती हैं, उनके लिए क्या कुछ खास बातें बताना चाहेंगे कि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो बेशक हो ही जाएगा?
1: उनके लिए यही संदेश है कि आप जैसे अगली बार असफलता मिली, उनको कहता हूँ कि आज से लग जाओ, रीट भर्ती 2027 या 28 में आ जाएगी, आप अपना मेटेरियल सीमित रखें, आरबीसी या एनसीईआरटी को फॉलो करें, बाकी ज्यादा बुक लेट नहीं लानी है, एक सब्जेक्ट की एक बुक लाओ, उनको फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, बाकी मोबाइल से दूरी बनाओ, फालतू दोस्तों से दोस्तों को मतलब अपने साथ न रखे, एकांत में रहकर पढ़ाई करो, फायदे रहेगा।
0: क्या बात है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सही और सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं को प्रदान करी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: दोस्तों अभी आपने सुनी रीट 2025 भर्ती परीक्षा में पास आउट अभ्यर्थी धर्मेंद्र जानी से राहुल की फोन आउट बातचीत, जिसकी प्रस्तुति थी राजेश लामडोर द्वारा।

0: क्या बात है, बेहतरीन सा म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। प्रोग्राम युवाणी इस वक्त चल रहा है और इस आवाज़ का नाम राहुल मेरे साथ हैं।
1: मैं अदिति। दोस्तों
0: बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे गाने हैं, मज़ेदार सा म्यूजिक चल रहा है और इस बीच गुरुवार का दिन है तो स्पेशल कहानी का दिन है और आज की कहानी शुरू होती है।
1: दोस्तों कभी कभी हम सब सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन पढ़ाई भी हो जाएगी, जिम भी शुरू हो जाएगा, पेरेंट्स को प्राउड भी फील करवा देंगे और सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो एक दिन आता कब है? आज की कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो हर दिन कल पर भरोसा करता था और एक रात उसका कल उससे मिलने आ गया। कहानी का नाम है कल का आरव।
0: आरव जोधपुर की एक पुरानी कॉलोनी में रहता था। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए 2 साल हो गए थे। यूपीएससी की बुक्स उसके रूम में ज़रूर रखी थी लेकिन उन पर जमी धूल साफ करने का भी वक्त उसके पास नहीं था। सुबह अलार्म 6 बजे का लगता और आंखें खुलती भाई साहब की 10 बजे। दिन भर रील्स वीडियोस, बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस भी देखा करता था और रात का वो गिल्ट, ये ज़िंदगी उसकी, उसको रूटीन बन चुका था कि भैया उसे रील्स देखनी है, उसे वीडियोस देखनी है, दैट्स इट। हर बार उसका एक ही डायलॉग होता था कि कल से पक्का शुरू करूंगा।
1: उसकी दादी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती थी, बेटे कल कभी आता नहीं है, बस आज ही कल।

0: बन जाता है, लेकिन आरव हमेशा हंसकर टाल देता। वो कहता, दादी आप नहीं समझोगी, कंपटीशन बहुत टफ है। शायद वो कंपटीशन से काम और अपनी आदतों से ज़्यादा हार रहा था।
1: एक दिन उसकी बचपन की दोस्त मीरा उससे मिलने आई। मीरा ने एक एनजीओ शुरू किया था जहां वो ज़रूरतमंद बच्चों को डिजिटल स्किल्स और इंग्लिश सिखाती थी। उसने आरव से कहा, वीकेंड पर चल ना, बच्चों को थोड़ा कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ा देना। आरव ने मोबाइल से नज़रें उठाए बिना ही जवाब दे दिया, अरे यार अपने पास टाइम नहीं है, अपनी प्रिपरेशन भी तो करनी है मुझे। मीरा हल्की सी मुस्कराई और बोली, प्रिपरेशन? ये कैसी प्रिपरेशन? ये बात आरव को अंदर तक चुभ गई, क्योंकि सच अक्सर थोड़ा दर्द तो देता ही है ना।
0: उसी रात दादी माँ ने आरव को अपने पास बिठाया और अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैं जवान थी ना, तब सोचती थी कि सिलाई सीखूंगी, लेकिन हर बाल कर पर छोड़ दिया। और फिर एक दिन उम्र निकल गई। इंसान की सबसे बड़ी गलती गलत फैसला लेना नहीं, बल्कि कोई फैसला ही ना लेना है। लेकिन आरव के कानों में ईयरफोन्स थे और कानों में इंस्टाग्राम्स की रील्स। उसने आधी बात सुनी और आधी हवा में उड़ा दी।
1: अगली सुबह आरव कोचिंग के लिए निकला। रास्ते में एक पुराना रेलवे स्टेशन पड़ा और अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो प्लेटफॉर्म के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वहीं एक बुज़ुर्ग आदमी बेंच पर बैठे थे, सफ़ेद कुर्ता, हाथ में एक पुरानी डायरी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उन्होंने आरव से पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो? आरव ने कहा, अपना फ्यूचर बनाने। बुज़ुर्ग हंस पड़े और बोले, अच्छा कब से बना रहे हो? आरव ने मुस्करा कर कहा, बस 2 साल से।
0: बुजुर्ग ने डायरी बंद कर दी और धीरे से कहा, क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहोगे? आरव ने मजाक में कहा, लगता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। बुजुर्ग बोले, नहीं, मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो लोगों को उनका कल दिखा देता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी डायरी आरव के हाथ में दे दी।
1: डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आरव शर्मा, उम्र 35 साल। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना खोला और जो लिखा था उससे उसकी सांसें मानो रुक सी गई।
0: दोस्तों, आखिर डायरी में ऐसा क्या था जिसने आरव की पूरी दुनिया हिला दी? क्या वाकई वो अपना फ्यूचर देख रहा था, या फिर ये सिर्फ एक अजीब सा इत्तफाक था? इसका जवाब मिलेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं युवाणी।

0: वेलकम बैक जो आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इन आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: दोस्तों, मैं हूं अदिति।
0: प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और युवाणी में आप सुन रहे हैं कहानी कल का आरव। और आरव के हाथ लग चुकी थी एक ऐसी डायरी जिसमें शायद उसका आने वाला कल लिखा हुआ था।
1: डायरी के पहले शब्द थे, उम्र 35 साल, सपने अधूरे, बहाने हजार। आरव का गला सूख गया। उसने आगे पढ़ा, मैं आरव हूं, और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम वही गलतियां कर रहे हो जो मैंने की थी।
0: डायरी में लिखा था, मैं हर काम कल पर छोड़ता रहा। पेरेंट्स बूढ़े हो गए और दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंच गए और मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखते देखते खुद एक मोटिवेशन की ज़रूरत बन गया। ये पढ़ते ही आरव की आंखें बाहर आई और उसे एहसास हुआ कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता।
1: और फिर डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, एक दिन मुझे समझ आया कि सपने पूरे ना होने का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना उन्हें शुरू ही ना करने का पछतावा होता है। उस पर आरव को महसूस हुआ कि शायद जिंदगी उसे एक आखिरी मौका दे रही है।
0: उसने डायरी बंद की और तुरंत उस बुजुर्ग को ढूंढने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली बेंच, हल्की बारिश और हवा में गूंजती हुई एक आवाज़। कल का बदलना है, कल को बदलना है तो आज से शुरू करो।
1: उस दिन आरव सीधा मीरा के एनजीओ पहुंच गया। पहली बार उसने किसी और के सपनों में अपना थोड़ा सा वक्त लगाया। बच्चों को पढ़ाते हुए उससे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि हर रोज एक छोटा कदम बढ़ाने का नाम है।
0: दोस्तों, हम सबके अंदर एक आरव कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से फिटनेस, कल से नए गोल्स।

0: लेकिन सच तो यही है कि कल कभी आता ही नहीं है। आज ही वो दिन है जहाँ से हर नई कहानी शुरू होती है।
1: तो आज का सवाल आप सबके लिए दोस्तों, ऐसा कौन सा काम है जो आप काफी टाइम से टाल रहे हैं? शायद उसे शुरू करने का सही वक्त अभी ही है, इसी पल है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो आज पर भरोसा करते हैं, सिर्फ कल पर नहीं।
0: जय, बिल्कुल सही कहा आपने, जो आज पर भरोसा करते हैं कल पर नहीं। अगर आज आपने कोई चीज ठानी है, करना है, तो उसे आज से ही शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज की अगर तैयारी आज से आपको शुरू करनी है, तो हाँ बिल्कुल आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल का इंतजार आपको उस डूबते हुए गर्त में लेकर जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, और ये थी आज की गुरु और स्पेशल की कहानी।

0: वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपका प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। राहुल इस आवाज़ का नाम है, और इस राहुल से ना जल्दबाजी में जब भी कोई काम करता है तो इससे बहुत सारी गलतियां बहुत आसानी से हो जाती है। कोई भी काम, अगर मैं किसी काम को बहुत जल्दी में कर रहा हूँ, निकलता निकलता कर रहा हूँ, तो मुझे उस काम में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है और पता भी नहीं चलता है। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए एक स्पेशल वर्ड बना हुआ है, उसके बारे में बताओ भाई, क्या है वो वर्ड?
1: राहुल, ऐसी जो तुम्हारी जो हरकतें हैं इसको हम बोलेंगे स्लैप डैश तरीका। तो ये जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जल्दी जल्दी बिना ध्यान या प्रॉपर प्लानिंग के कर देना, यानी केयरलेस मैनर में करना। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, जैसे लास्ट मोमेंट पे हम असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं तो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी जल्दी से कुछ भी लिख दिया और बस दे दिया, तो वो चीज़ स्लैप डैश मैनर है और उसमें काफ़ी गलतियाँ होने के चांसेस भी होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट थोड़ा स्लैप डैश तरीके से बना दिया है, इसलिए उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो आप इसको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्लैप डैश अप्रोच से काम हो तो जाता है लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
0: ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है जल्दबाजी में। मैं कई बार बाइक पर निकलता हूँ तो हेलमेट लेना भूल जाता हूँ साथ में, और ऐसे में ट्रैफिक वाले भैया रोक लेते हैं और
1: हाँ,
0: बोलते हैं
1: तब
0: आ
1: याद
0: जाओ भैया
1: आता
0: आ जाओ।
1: है।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो सीट बेल्ट लगाना भूल जाता हूँ जल्दबाजी में, और ऐसे में घर वाले अगर पास होते वो देख लेते तो वो टोक देते। तो कहीं ना
1: बिल्कुल।
0: कहीं जल्दबाजी में किया हुआ काम में आपकी गलतियाँ जो है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़
1: ऑफिस
0: जाते
1: में
0: हैं।
1: भी अगर कुछ गलती से हम इधर उधर कर देते काम तो काफी उसका जो है रिजल्ट रिपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं,
0: और
1: तो ऐसा
0: इस
1: काम नहीं करना
0: सिचुएशन के लिए
1: चाहिए।
0: एक स्पेशल वर्ड बना हुआ, उसे क्या कहते हैं?
1: स्लैप डैश,
0: क्या
1: इसकी
0: बात
1: स्पेलिंग
0: है।
1: है SLAPDASH।
0: तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास के लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसके लिए भी आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मज़ेदार से गाने। मज़ेदार से गानों में अगला गाना पेश है साहब।

0: क्या बात है, बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक कीजिए एक बार आपका फिर से प्रोग्राम यूवान इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप। देखो भैया गाड़ी में बैठे हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप बाइक पर जब कभी भी सवार हों तो हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। प्रोग्राम यूवान चल रहा है तो भैया सरकारी नौकरी की जानकारी, भर्तियों की जानकारी कैसे पीछे रह सकती है ना? भर्ती आ चुकी है किसकी?
1: RSSB की यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, इसमें ग्रेजुएट लेवल CET परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। इस एग्ज़ाम के ज़रिए कई ग्रेजुएट लेवल सरकारी भर्तियों में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसकी एप्लीकेशन जो है उसकी स्टार्ट डेट होगी 4 जुलाई की, और लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन की वो है 2 अगस्त 2026।
0: जी बिल्कुल। और इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे? अगर इस भर्ती में पास हो जाते हैं तो वो पोस्ट हैं प्लाटून कमांडर की, पटवारी की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तहसील राजस्व अकाउंटेंट की, सुपरवाइजर वुमन एम्पावरमेंट की, उसके बाद डेप्यूटी जेलर पर आप परीक्षा दे सकते हैं इस एग्ज़ाम की, साथ ही साथ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड की दे सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि VDO की परीक्षा आप दे पाएंगे, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट मेल और फीमेल ग्रेड सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये परीक्षा आप दे पाएंगे। अगर इस भर्ती के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है SSOID.rajasthanservicesrules.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो इस भर्ती के लिए फॉर्म अपना अप्लाई कर पाएंगे।

0: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप। आज की शाम गुरुवार का दिन है और शाम अब धीरे धीरे ढलने को है। बहुत सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं। आज मेरे साथ हैं,
1: मैं हूँ अदिति।
0: बहुत सारी बातें हो रखी है और एक ख़ास खबर आपको बताई देते हैं, जो कि एक निजी एयरलाइंस है, उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन निकाला है। जो लोग फ्लाइट में जो सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी काम की खबर होने वाली है। उन्हें लगता है कि यार ये फ़्लाइट का जो फेयर है, जो किराया है, बहुत ज़्यादा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक निजी एयरलाइंस है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब उन्हें एक लाइट फेयर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें उनको हवाई सफ़र करने में थोड़ी और उस किराए में जो है वो सहूलियत मिलेगी। और ये नए विकल्प के तहत जो है वो आप सस्ते टिकट, जो आमतौर पर टिकट मिलते हैं, एक नया ऑप्शन जिसमें आपको देखने को मिलेगा लाइट फेयर, जिससे आप सस्ते टिकट खरीद पाएंगे। पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? विमान में यात्री केवल 7 किलोग्राम का जो है वो कैबिन लगेज ले जा सकेंगे, और उसमें सीट जो है वो भी एयरलाइंस जो है वो खुद तय करेगा। 15 जुलाई से यात्री करने वालों को ये सुविधा मिलेगी और इसकी बुकिंग जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रही है। तो भैया हो गई है वो बुकिंग, तो शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस सफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लाइट फेयर नाम करके का आपको ऑप्शन दिखेगा, उससे आप अगर टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको थोड़ी सी पैसों में, उस किराए में राहत ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन कंडीशंस आपके सामने, 7 किलोग्राम का लगेज आप उतना ही ले जा पाएंगे, और सीट जो है वो एयरलाइंस जो आपकी वो खुद चूज़ करेगा। तो देख लीजिए, सफ़र अगर करना है तो थोड़ा सा लाइट फेयर देकर कर सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम यूवाणी चल रहा है, गाने मजेदार से ऑन है।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये खूबसूरत शाम यहीं ख़त्म करते हैं। आज मैं थी आपके साथ अदिति मौर्य, और मेरे साथ थे
1: इस आवाज का नाम राहुल, प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की कंसोल पे, हमारे साथ कल्याण। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए गाना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि यह विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में यह विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण यह नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9:15 पर। चौपाल सजेगी शाम 7:00, वहीं कार्यक्रम सीमाड़ेरी गूंज सुनना ना भूलें 7:30 पर।

श्रोताओं, आज की प्रसारण सभा में फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण समय रहेगा रात 8 बजे और रात 9:30। श्रोताओं, आईसीसी विमेंस T20 विश्व कप में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच द ओवल लंदन में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 से। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं कल की प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। श्रोताओं, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 8:30। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7 बजे से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिए कल सवेरे 6:15 से।

युववाणी युवा साथियों की पसंद के इस कार्यक्रम को सुनिएगा कल शाम 5 बजे से। श्रोता हमेशा की तरह चौपाल सजेगी कल शाम 7 बजे और कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज सुनना ना भूलें 7:30 से। श्रोताओं कल शुक्रवार है, आकाशवाणी जोधपुर के नियमित श्रोता अपना पसंद का कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनेंगे रात को 10 बजे से। नए श्रोता मन चाहे गीत 531@gmail.com पर

اپنا میل بھیج کر کے اپنی اپنا فرمائشی گیت سن سکتے ہیں. ای میل پتا ہے MANCHAHEGEET531@gmail.com. श्रोताओं, यह था कार्यक्रम विवरण. हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं. श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है. आइए आपको सुनवाते हैं देशगान.

0: श्रोताओं, समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 564.97 यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार रिले किए जाएंगे और उसके बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मूकश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन 2000+ परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखरस्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः, ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं संजातम्।
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले

0: डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: जापान देशस्य प्रधानमंत्री सानेता काइची इत्येष गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्रीरूपेण ताकाइची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विकपटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंचं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापानदेशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गम्भीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्यां आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखांकितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वं आपूर्ति श्रृंखलावरोधैः व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रांतरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां सुशासने व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री सानेता काइची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधान विषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनं कृतम्।
0: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधि रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 million तीर्थयात्रिणां प्रथम समूहं जम्मू नगरस्य भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविरात् विस्तृत सुरक्षा व्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्र यात्रायां भागग्रहणाय जम्मू नगरं आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूतिः वीबीजी रामजी अधिनियमः 20/25 आजीविका सुनिश्चिततायाः ग्रामीणाजीविकायाः सुदृढीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृत्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे गुजरातस्य केषुचित् भागेषु उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु मध्यप्रदेशस्य अधिकांश भागेषु हरियाणा

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बीबीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का आज से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुक्कावरिपल्ली गांव से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि योजना के तहत पहले ही साल में 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अगले 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गांवों में रोजगार बढ़ने के साथ ही वहां की तस्वीर बदलेगी।
1: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
0: केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मंडी से राष्ट्रीय कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए ये योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे।
2: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण, निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है, जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गांव को हम विकास से जोड़ सकें।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 424 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने देवमाली में 2 करोड़ रुपए की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीबीजी रामजी योजना के तहत 2 लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने एआई का

0: बुद्धिमता से उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया। श्री सिंह जयपुर में आयोजित दो दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासनिक सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के अनुरूप सरकार नागरिक केंद्रित पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुशासन में बाधक बन रहे करीब 2000 नियमों को समाप्त किया है, जिसमें दस्तावेजों के अनिवार्य सत्यापन सहित कई अन्य फैसले शामिल हैं। समारोह में श्री सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल 7 श्रेणियों में कुल 17 ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं। डिजिटलीकरण के माध्यम से जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को गहरा और व्यापक बनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों में ग्राम पंचायत श्रेणी भी शामिल है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में सभी राज्यों की भागीदारी रही, सभी ने अपने अनुभव साझा किए।
1: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहां की बेस्ट प्रैक्टिस है यहां साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह के तहत आज जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित जन कल्याण की सशक्त विचारधारा है। उन्होंने कहा कि एकता, विश्वास और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना करते हुए समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 7 दिन की देरी से आया मॉनसून वर्तमान में टोंक, जयपुर और अलवर में सक्रिय है। भरतपुर के बयाना में आज तेज बरसात हुई, वहीं शहर के अलावा कई क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में 4 इंच से ज्यादा बारिश के समाचार हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। दौसा में तेज बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। अलवर शहर और आसपास के इलाकों में भी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के आगामी 2-3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
2: आज मानसून के समय से एक सप्ताह की देरी से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में प्रवेश किया है। इसी के साथ अभी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश की रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा एक और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के ऊपर बना हुआ है, साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: राज्य में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से डेंगू

0: की रोकथाम, मच्छर नियंत्रण और जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि मॉनसून के दौरान एडीज मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करना और आमजन की सक्रिय भागीदारी ही डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों का सहयोग लेते हुए समुदाय स्तर पर कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: डेंगू नियंत्रण के लिए जन भागीदारी, जांच करें, सफाई करें और ढकें। जुलाई 2026 में जो डेंगू के लिए माह मना रहे हैं, इसके अंदर चिकित्सा विभाग के अलावा शहरी, ग्रामीण, पंचायती राज, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन, नगर पालिका, स्थायी निकाय, गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से स्थानीय और धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक का आयोजन करेंगे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने और तथा 3 दिन के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। श्री यादव आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। श्री यादव ने बताया कि सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। ये सम्मेलन देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी लाने और वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। आरएएस भर्ती प्रारंभिक परीक्षा अब 29 नवंबर के स्थान पर 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अगले साल 1 और 2 मई को आयोजित होगी। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा पहले 6 दिसंबर को होनी थी। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीवीजी रामजी योजना पर अगले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर में 2 दिन के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का समापन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एआई को सुशासन की अनिवार्य जरूरत बताया। राज्य में मॉनसून के प्रवेश के साथ कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, अगले 24 घंटों में अनेक जिलों में भारी बरसात की संभावना। और प्रदेश में जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाएगा, विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले में इन दिनों जल संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जन सहयोग से रेत में दबे गुलाब सागर, पणिहारी और सेलड़ी तालाबों के एकीकरण का काम किया जा रहा है। इससे इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर एक बड़े जलाशय का स्वरूप दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बीते दिनों कामों का निरीक्षण किया और इससे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन किया। जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक में पेयजल और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता और जल स्रोतों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने, चेतावनी बोर्ड लगाने तथा आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और आवश्यक निगरानी व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सुरक्षा

संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित आवेदनों के निस्तारण और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रशासनिक अनुभव साझा किए गए। अधिकारियों को जनसेवा, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के महत्व से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने बापीणी उपखंड के इशरू गांव में बीते दिनों रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और मुआवजे से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचा

0: पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के महत्व से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने बापीणी उपखंड के इशरू गांव में बीते दिनों रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली और मुआवजे से संबंधित समस्याएं उनके सामने रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। फलौदी विधायक पब्बा राम विश्नोई और जिला कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान, नियंत्रण कक्षों की स्थापना और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 86,000 से अधिक किसानों को 23वीं किस्त की राशि का लाभ मिला है। किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फलौदी दुर्ग में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में 1,21,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत 583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 519 वरिष्ठ नागरिक रेल मार्ग से और 64 हवाई मार्ग से धार्मिक यात्रा करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 1,53,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए जिले भर में सैकड़ों पोलियो बूथ स्थापित किए गए और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। फलौदी शहर में भामाशाहों के सहयोग से नए यातायात पुलिस थाने का निर्माण किया गया है। इसका बीते दिनों उद्घाटन हुआ। पुलिस विभाग ने इस पहल को जन सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी राम जी माथे आवता 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। जयपुर में 2 दिन रो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पूरो थियो। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एआई ने सुशासन री जरूरत बताया। राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूफी, आवता 24 घंटा माए कई ठोड़ा भारी बारिश रा आसार। हर प्रदेश माए ओ महीनो एंटी डेंगू माह रा तौर मनायो चावेला। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी रातेत आज आखा देश में काम शुरू फेंक्यो। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश रा मुक्कावरी पल्ली गांव इनरी शुरुआत कीनी। इ मौके श्री चौहान कहो कहीं रतेत पहली साल माए 1,51,000 करोड़ रूपया रो प्रावधान करीचियो है, जबकि आवता 5 साल माए 7.5 लाख करोड़ रूपया खर्च कराया जावेला। जिनो गांव माए नौकरी धंधा रा मौका बधवा सागे वठेरी तस्वीर बदलेला।
2: 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे, मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। और ये पैसा ठीक से गांव में खर्च हो गया तो मजदूरों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव की तस्वीर भी बदल जाएगी और वहां की जनता की तकदीर भी बदल जाएगी।
1: केंद्रीय मंत्री ऐलान कीनो के देश रा किणी राज्य माए मजूरी 300 रुपया रोजिना कम नहीं फैला। वे बतायो कि वीबीजी रामजी ने असरदार तरीकाओं लागू करण सारू

0: प्रशासनिक खर्च 6 9% करती उचियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ब्यावर जिला री मसूदा कृषि उपज मंडियों वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए ई कार्यक्रम में जुड़िया। इन दौरान वे वीबीजी रामजी रा राज्य स्तर रा कार्यक्रम में कहो के गांव री बरकत और विकास सारू वीबीजी रामजी लाइचियो है। श्री शर्मा कहो के इन रे जरिए पानी बचावन गांवई हलका में बुनियादी ढांचा विकास आजीविका और आपदारों सामो करण जुड़िया काम कराया जावेला।
1: इस योजना में एक डिजिटल बहु स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें निश्चित समय सीमा जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके 6% से 9% किया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी तकनीकी विशेषज्ञ प्रशिक्षण निगरानी क्षमता उनकी रख सके। इस कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है जिससे हम विकास उन्मुखी कर सकें और उस गाँव को हम विकास से जोड़ सकें।
0: मुख्यमंत्री ई मौके करीब 424 करोड़ रूपया रा विकास रा काम री शुरूआत कीनी। वे देवमाली माए 2 करोड़ रूपया रा खर्च जातरुआ सारू आराम घर बनावन रो ऐलान कीनो। कार्यक्रम माए श्री शर्मा वीबीजी रामजी रा तेत 2 जना ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दीना। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुशासन री जरूरत बन क्यों है। वह आज जयपुर में राखी जया 2 दिन रा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा समापन समारोह में बोल रहा है। जितेंद्र सिंह एआई ने बुद्धिमानियों काम लेवन री जरूरत माथे जोर दिनो। ई मौके केंद्रीय मंत्री कहो कि विकसित भारत 2047 रो सपनो सांचो करण सारू प्रशासनिक सोच माए बदलाव जरूरी है। वह कहो कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस रा मंत्र रा हिसाब सरकार जनता माथे खास ध्यान देवन वाला साफ कोई सागे और जवाबदेह प्रशासन ने बधावो दे रही है। डॉक्टर सिंह कहो कि केंद्र सरकार सुशासन माए अड़चन पैदा कर रहा करीब 2000 नियम खत्म करती ना है जहां माए कागजात रा जरूरी सत्यापन समेत कई फैसला शामिल है। जलसा माए श्री सिंह 7 श्रेणियां माए 17 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार तीना आ माए 10 स्वर्ण और 6 रजत पुरस्कार शामिल है। डिजिटल तरीका जमीनी लेवल माथे सेवा पुगावन ने और बेहतर बनावन सारू दिया जाए इनाम माए ग्राम पंचायत श्रेणी शामिल है। कार्यक्रम पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री सिंह कहो कि एआई मौजूदा दौर माए जिंदगी री जरूरत बन गयो है।
2: ये 11वीं इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आज जयपुर नगर में की गई है और एक बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इसमें भागीदारी नहीं रही, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। प्रत्येक प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव जो वहां की बेस्ट प्रैक्टिस है यहां साझी की, एक दूसरे के साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के अनुभवों का, और इस श्रृंखला को और इस क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है वो ना केवल गवर्नेंस तक सीमित है बल्कि उनका बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रहा है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी।
0: सहकार सप्ताह राते आज जयपुर माए राज्य स्तर रो मान जलसो राखी चियो। जलसा माए गांवई हलका माए नवाचार तकनीकी दक्षता और बेहतरी सारू काम करण बाबत सहकारी संस्थावां रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करी चियो। जलसा माए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक कहो के सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सबके लिए एक सब एक के लिए रा सिद्धांत माथे आधारित जनता रा भलारी मजबूत सोच है। वह कहो कि एका भरोसा और भेड़ी कोशिशाओं हर चुनौती रो सामो करता था का समावेशी और लगातार विकास रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यरा उगनी हलका माए चौमासारी बिरखा शुरू फेंकी है। मौसम विभाग रे मुजब 7 दिन मोड़ा पाछे टोंक जयपुर और अलवर माए चौमासारी बिरखा वेवन लगी है। भरतपुर जिला रा बयाना माए जोरदार में बरसियो। प्रतापगढ़ माए 4 इंच उम्बत्ती बिरखा रा समाचार है। चित्तौड़गढ़ माए तेज बरसात।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: साथियां सिंजिया सात बजेन उड़ीक रखो आप इन कार्यक्रम री जीरो नाम है चौपाल और जरिए चौपाल दिनेश भाई आप कराओ प्रयास के बढ़िया बढ़िया गीत मनोरंजन और ज्ञान सिरी की बाता श्रोता हमारे साथ साझा करा।
1: सही कहो गुरुंद्र भाई और इन साथ साथ समसामयिक जी की बाता है, युवा मोटियारी री बाता है, महिलाओं री बाता है, बालक बालिकाओं री बाता है, बुजुर्गों री बाता है और साथ जी का युवा मोटियार जी का रोजगार प्राप्त करनी चाहे है उन्हारी भी देखो आप टाइम टाइम माता जी की जानकारियां है बाता है ग्रहा और जिका अबार जुलेरो जी को महीनो चाल रियो है, स्कूल जी का टाबरिया है जिका पहली बार स्कूल जा रहा है तो कटी देखो एडमिशन ले रिया है कर रिया है, कटी कोई टाबर बारहवीं पास कर ली है तो वे कॉलेज रे मैंने एडमिशन ले रिया है तो वे भी आप देखो स्कूल टीसी ले जावे और कॉलेज में प्रवेश कर रिया है।
0: बिल्कुल लग देखा के कॉपी किताबारी दुकान माते भीड़
1: हाँ
0: बस्तार टिफन आनी दुकान माते भीड़ तो एक तरह स्टेशनरी जकी है नी
1: हाँ
0: व्यापारिक सप्तो है इन सप्ताह महीने स्टेशनरी दुकान जकी है वहां ने फुर्सत ही नहीं है टाइम ही नहीं है तो देखो भाई स्कूल जको है वो माध्यम है मिनक ने मिनक बनाओ
1: हाँ।
0: आदमी पैदा हो न अगर स्कूल री पढ़ाई नहीं करे तो वो आदमी जानवर समान है तो जानवर मिनक बनानो है तो टाबरा ने पढ़ानो है और टाबरा ने पढ़े पे आ उम्मीद करना कि नहीं भाई मारे तो सरकारी नौकरी चाहिए इन बढ़ती हुई जनसंख्या जके ने आप
1: 140 करोड़
0: करोड़ हाँ उनसे ज्यादा मिनखा रहे वास्ते सरकार प्रत्येक व्यक्ति वास्ते या प्रत्येक परिवार वास्ते सरकारी नौकरी की व्यवस्था कुण कर सके तो सब पहले तो आपने आपने परिवार मुझे ध्यान देना पड़ी कि नहीं परिवार सीमित होना चाहिए कोई भी प्रथा कोई भी रीति कोई भी रिवाज अगर टाबर पैदा करने की बात कहे तो वो झूठी बात करे ऐडी
1: हाँ।
0: बात करना लो टेम रे हाथे बहुन नालो नहीं है वो आपने चाहे के थे घना टाबर पैदा कर दो इनी तरह गरीब गुरबा रहो आथाना टाबर पढ़ लिखन आगे नहीं बढ़े थे वाने आगे भेड़ बकरी जू फिरता रहो और मैं चावे जू थाने आंकता रहे इन वास्ते भाई देखो स्कूल री बात हूँ आ चीज प्रत्येक युवा ने जो कोई वक्त आपनो रेडियो सुन रियो है कार्यक्रम सुन रियो है उन्हें ये में बिठाना है कि टाबर एक ही चौक हो लड़का हो या लड़की टाबर एक ही हाक रो है भाई।
1: सही कहो गुरुंद्र भाई घर परिवार की परिस्थितियां देखो कि आप टाबरा ने किन तरह की शिक्षा दिलावला करावला कई कई जी की जरूरत है समय के अनुसार आप पूरी करावला जमानो बहुत आगे बढ़ गो है पहला वह जू चला लेता कर लेता हमें हल्ले को नहीं और एक बात गुरुंद्र भाई आप जू पते की स्कूल या टाबर स्कूल जावे करे तो हमें ऐड़ा बच्चा जी का ड्रॉप आउट होगा है स्कूल छोड़ दिए तो आड़ पाड़े जी का पढ़िया लिखिया मानस वे ध्यान देवे कि भाई फलाना टाबर 3-4 साल हो गए 5 साल हो गए हाथ 8 साल हो स्कूल नहीं जावे तो वाने आप प्रेरित करो कि भाई इन स्कूल भेजो और यूं सरकार का निशुन जिका अपन शिक्षक है वे देखो घर घर जावे है और जानकारी भी लेवे है कि भाई किसा टाबरिया जी का है गरीज बैठा है कटे उनारो प्रवेश नहीं है या एनरोलमेंट नहीं है वे देखो कराओ भी करे थोड़ी जागरूकता जी की है अपने रखनी है अपने आए पाए देखना है गांव गवार ढाणी में जट देखना है कि भाई टाबरी कोई 4 साल हो गो कोई 6-7 साल हो गो है और वो घरेज बैठो है तो इन्हें प्रेरित करो वाने माता पिता ने कहो कि भाई इन बालक ने स्कूल भेजो।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: बिल्कुल बड़ी चौकी बात बताई दिनेश के भाई, जब तक टावर स्कूल नहीं जाए नहीं तो जब तक पार नहीं पड़ेगा।
2: छोटा टावर आंगनबाड़ी जाए और मोटा स्कूल जाए।
1: कोई मान लो थे ड्रॉप आउट री बात करी तो भाई थाने मान लो कोई बकरी या गोनो चरण वास्ते की ये जरूरत है तो वह जरूरत आप रे टावर पूरी मत करो।
2: हाँ
1: आप वो गोना बकरी यारू थे घंटे दो घंटे तो भेजो लेकिन उएरो पूरी जिंदगी उएरो पूरो भविष्य जो को है थे दाव माते लगा दो इन वास्ते पढ़ाई ना तो जोड़ो। और भाई देखो दूजा छोटा मोटा काम है तो बने खुद करो या इन तरह करो कि मानी जो की पढ़ाई है स्कूल आउन जाउन रो टाइम है वो प्रभावित नहीं होवे। दिनेश भाई देखो के अगर आप अपने आजादी रे बाद रे सफर रे बारे में थोड़ो विचार करा
2: हाँ।
1: तो 77 साल पहला अंग्रेज अटे अपने माथे हुकूमत करता गुलाम देश और लोग कहता कि साफ सपेरा रो देश है लार ले 77 साल यानी आजादी रे इन सफर रे मायने आज आपा चौथी पांचवी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया और अगर पावर सेंटर के रूप में देखा ताकत मुजब तो दुनिया री तीजी बड़ी ताकत था। तो ओ जो कुछ सफर है ये में अगर 100% कोई एक चीज रो योगदान है तो वह है पढ़ाई। इन पढ़ाई लिखाई रे बदौलत आज राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर माते आपना जका होनार टाबर लड़का लड़की है वह देश विदेश में जा और जिन तरह सेवा कर रहा है जिन तरह वह काम काज कर रहा है तो वह खाली किनी देश में जान काम ही नहीं कर रहा उरे साथ साथ एक डायस्पोरा बन रही है एक ताकत बन रही है जो कि विश्वव्यापी है और आज ताकत

0: जरूरत आप बात है सा आपा निभावा हर तरह
1: अगर आप अपने पड़ोसी देश की बात करा तो देखो के बिन अकारण ही चीन अपन मत हमलो करियो।
0: हाँ।
1: और रही बात पाकिस्तान री तो 47 है 65 है 71 है कारगिल है उरे अलावा देखा के लगातार आतंकी जकी घटना है।
0: हाँ।
1: वे उठेरा टेररिस्ट टावरा री जकी है वो इन्हें इन तरह दिमाग वा कहीं के अकल कार्ड अटे आतंकी हमलों कर मीनक मराउंडी लाल लदीना कश्मीर में इन्हें पहल के बरस हो नी।
0: हाँ ऑपरेशन सिंदूर
1: देखो के किन तरह की मानसिक विकृति होगी के लुगई उबी है न आदमी वो है न आदमी ने गोली चलान मार दियो।
0: हाँ।
1: तो वे मारने लगा कहीं मीनक को नहीं है वह सोच कितनी गंदी और घटिया वेला जकी मीनक मारन की प्रेरणा देवे तो उन सोच ने रोकना पड़ेला। और अब जिन दिनों भाई इन तरह की घटना हुई तो लारली कई सरकार जकी है दोनों देशों के दरमियान जको जल समझौता हो
0: सिंधु नदी समझौता।
1: तो अब देखो एक तरह तो बे अपने देश रे में लगातार मिनखा ने जका जकारो कोई कसूर नहीं है।
0: हाँ।
1: निर्दोष लोगों ने मारने वास्ते आतंकवादी भेज रही है आप उन जको है वह ने पानी भेज रही है।
0: हाँ।
1: तो कठे ने कठे सरकार कहो कि नहीं खून और पानी जो को है वो
0: एक
1: हाथ नहीं बगैर इन मुजब चाहे शिमला समझौता हो चाहे कोई समझौता हो।
0: हाँ।
1: चाहे जो कहीं थे कहो बात
0: सिंधु जल संधि समझौता
1: सिंधु जल संबंधी तो है और नहीं बेवेला।
0: हाँ।
1: और आज वो इन बात ने लाले 15-20 दिनों में देखूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाकिस्तान री चीखा निकल गई।
0: हाँ।
1: बात बात रहा वो ठेरा डेलीगेशन आवे के माने जो को पानी रोक ही मैं हुए सांस रोक दान कोई के पानी रे आडो हाथ दे तो मैं हुए हाथ काट दान
0: बात बात री बात करे सा
1: दूजी जगह पलटर खटके के नहीं नहीं नहीं माऊ ओ तो की नहीं होवे ने माने पानी तो खुलानो ही पड़ी।
0: हाँ।
1: तो झूठ झूठी पत्रकारिता झूठो नरेटिव और उरे साथे झूठी जबकि दुनिया ने गुमराह करने की बात
0: मानसिकता।
1: हाँ मानसिकता ए हमें नहीं चले भाई हमें ट्रांसपेरेंसी चले। आपने वो कहना पड़ी कि नहीं भाई मैं भारतीय धरारे मात है किनी तरह का कोई आतंकी घटना नहीं होने डाला।
0: हाँ।
1: खट पानी खुल जा।
0: हाँ।
1: थे आतंकवादी घटना ही कर हो उठे लोगों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ते गंदा अध्याय लिखो वहां टावर रा दिमाग और बाणी जैन साजी एडी करो कि आपा कहीं हाइज को नहीं। तो भाई वे टावर मोटा हो तो आतंकवादी बनी। तो हमें देखो कि लारले महीने भर रहे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो को कहीं के पत्र पत्रिका देखा नहीं।
0: हाँ।
1: तो भारत रो जो को एक मजबूत जो को सशक्त भारत रो जो को फेस है।
0: हाँ।
1: वो पूरी दुनिया ने आकर्षित कर रही है।

0: सही कहे गुरुंद्र भाई, भारत देश देखो सच्चाई माते चलन वालो देश है, और जी की आप ही बात कहवे बिल्कुल सच कहवे और खरी कहवे और सत्य कहवे, और इन तरह आप देखो विकास हर क्षेत्र में आगे कर रहे हैं, और सच्चाई जी की वे विन कोई जुटला नहीं सके।
1: बिल्कुल, जीत जकी है वह सच रही और सत रही हुई, झूठन झूठा नरेटिव फैल हुई। और देखो के भारत कदी आप रे 1000 साल रे इतिहास में कठी कोई चलान आक्रमण नहीं करियो। और इन तरह जका पर्यटक आयोडा है वह ने निर्दोष लोग ने अगर कोई उग्रवादी हमलो कर नुकसान पहुंचाई नहीं, तो हमें भाई वो पहलोड़ो टेम कोनी, पुराना भारत नहीं है जिक्र आवे, अब वो नयो भारत है। पलटन जवाब देला, एड़ो जवाब देला के पीढ़ियां याद रखेला। इन वास्ते हम ही संभल जाओ, सुधर जाओ, जना तो है फायदो, नहीं तो भाई एक मजबूत देश जो को करारो जवाब देगी तो वेरा जका खामिया जा है वह भुगतन वास्ते तैयार भी रहो।
0: सही बात कही।
1: और हमें देखो हथियुगी घनी कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो, तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करण सारू आप रे साथी गुरविंदर विष्णु
0: और दिनेश राणे जाने शेख दिराओ
1: राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुमान राम बिश्नोई, पीडियाट्रिशियन जालौर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, स्कूल फिर से खुल गए हैं और बारिश का

0: मौसम भी शुरू हो गया है, ऐसे में बच्चे अचानक बार बार बीमार क्यों पड़ने लगते हैं।
1: लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से कक्षा में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, साझा चीजों को छूते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसे में वायरल संक्रमण एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक आसानी से फैल सकता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, बारिश में भीगने पर तुरंत कपड़े बदलवाएं और गीले जूते यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल न भेजें। यदि बच्चे में सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण हैं, तो उसे आराम करने दें। इसके अलावा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
0: यह संदेश एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: श्रोताओं, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: Ơi nhậu lại ba. Ơi nhậu lại ba. Ơi nhậu lại ba, giờ này nghỉ ngơi đi đi đi nhậu lại ba. Ơi nhậu lại ba Ram Ram.
1: Ơi Ram Ram, phaatak khuli hui hai mai.
0: Phaatak to lagwai hai nahi na, phir baad mein khuli hai phaatak nahi lagwai hai khuli hai.
1: Aur koi nasho karne aaya ho kya ke
0: matlab khara ho. Nasho nahi hai nhậu lại ba. Kahan hai? Zara nigahe hum par rehm kijiye aur idhar dekh ke hamari taraf aao.
1: Oh oh oh.
0: Ha.
1: Kehni desri mein aaye aayi pardesh mein. Oh oh.
0: लोगों ने उलाबा कहीं है
1: कम हूं तो आयो कम मगज में आयो सारे
0: मैं बीरो खान भट्टू के जरा निगाहें करम में खुदा इधर कर दे ठीक है खताएं हमसे हुई है डर गुजर कर दे मेरे मालिक मेरे दाता मेरे परवरदिगार ठीक है सुन ले पुकार जल्दी से बारिश कर दे
1: ओ ठीक ठीक
0: आ बात है
1: ओ है जी को हुन तो आयो नहीं
0: हां
1: ओ ठीक कर कर भाई मदद
0: अरे नलबा उपारी खाओ लखनवी उपारी है
1: अरे हमें लखना भाई झारखंड राज लखन मत कर मार कने
0: दो जाना ले लो नलबा
1: तावड़ो घणो पर देखे नशो मत करे भाई कोई क्यों थे है जी को उंदे मार्ग बढ़िया था
0: तो थूक दूं मैं बे
1: थूक केड़ा है थूक मार थूक ना
0: ओ वा वा वा वा
1: आज तो खा
0: नवला बहेड़ी टोकी तो ऊपर आंगली बार आए पड़गी मुंडार मैं एकदम
1: ना ये है जी को थे कोई मिन्नत री भर्ती में हो थार क्यों थे मारा खून बाल ना टाओ रे
0: देखो नवला बा
1: मारे देखा थार मार समझो तो नहीं मैं
0: समझो तो आजादी टाइम सरकार ना समझौता कर रही है लोगों ने भले ही खातर अलग अलग
1: नहीं मारे थारे मामलो बैठे
0: कौन ही बैठे बड्डी बोलाऊ
1: कई बोला
0: बड्डी रो के पग है जे का नवला बा पाचा ले ले बाकी तो जीवन ही नहीं देवे कुल मिला
1: आ, जीवन है
0: ना बड्डी बनो बेलन बतावे बारीर महीनो रसोई मो के नवला बा चुपचाप हाँ रामेश्वर की करे काई है बेटा ओ है
1: क्यों बेलन बता मन बेलन बता मार बे क्या नहीं बेलन याद भी यार सुले कन पड़िया रे किन क्या के बेलन बता
0: चुल्ला रे हमी बारी है बादे को
1: बड्डी रो के बोले
0: ठीक ठीक देखो समझो तारी बात करियो नवला बा तो मैं तान बहुत बढ़िया बात बताऊं जो शिमला समझौता है ना 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जकी शांति संधि हुई है वो आज है जो को शिमला समझौता दिवस है
1: ओ ठीक ठीक है तो यो भाई के लाल बहादुर शास्त्री जी बे करियो हा कोई
0: नहीं है को शिमला समझौता है ना 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध रे बाद रे मैंने शिमला रे मैंने एक हस्ताक्षर हुआ इ खातिर शिमला समझौता कहवे और भारत री तरफ इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान री तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल
1: ओ ठीक हम गोरे भाई की कोई लड़ाई झगड़ो नहीं होना चाहिए
0: हां
1: शांति हो रहे और शांति हो रहे हम तो
0: अपन माटाल को नहीं बीच
1: हां हो
0: थैंक यू चार आवड़ी ले लो बलम दो

0: वाह भाई वाह, निहाल कर दिया,
1: बढ़िया भैया।
0: क्या जुल्म, क्या नहीं, जुल्म सहन करना गलत है,
1: जुल्म सहन करना गलत है और जुल्म करना भी गलत है, और कोई माते जुल्म हुए अपन देखा वो भी तू गुनेगार है।
0: क्या भाई देखे एक बार तो क्या नहीं, क्या सरासर अन्याय हो तो क्या नहीं, खिलाफत कर
1: पानी लाओ अरे भाण की पानी लगी देखो नवलाबा
0: अरे हर्द गर्म होड़ी रे भाई कई दिन हो
1: कटी कहीं
0: अरे 15 दिन पहला गावड़िया कहने थोड़ी जी को लड़ी बंदनिया तोड़ा नाती
1: अच्छा
0: देखो पाती घेर लायो उन दिन है जो पानी पियोड़ो जो को हाल छाती में कह नहीं कह
1: तो मन के देना
0: कहो है थे तो मैं कह था खन बैठता वो तो कह
1: मारे गीड़ो ले कटी
0: कह कटी नहीं जाओ कटी नहीं आ तो कौ है गीत लोग कौन गायो
1: देखो वो गीत है नी बहुत ही बढ़िया आवाज रा धनी सुरीली आवाज ना वो मोहम्मद अजीज ठीक है और नवला बा आज है ना 2 जुलाई 1954 रा बारी जन्म हुई और आज बारी जयंती आज रे दिन बे जलमिया
0: जलमिया नी
1: हाँ और देखो के बे भारतीय सिनेमा रे मैंने पार्श्व गायक हा और बंगाली और उड़िया फिल्मा में गाना गया और फिर बाद में जकी बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में जकी सनसनी फैलाई ना आपकी आवाज हूँ दुनिया कायल होगी कि वो आदमी आयो कुट
0: ओ ठीक ठीक ठीक
1: हाँ
0: मोहम्मद अजीज
1: मोहम्मद अजीज 1984 में इनमें पैदा हुई नी जने मुंबई आया और नवलाबा ए आपकी जिंदगी में 20,000 ज्यादा गाना गाया
0: भाई देखे पढ़े लिखो को फारसी क्या
1: हाँ?
0: और गाँव नाला

0: ने कही है कोई आरसी क्या,
1: मैं हूँ मर्द तांगे वाला। अरे अमिताभ बच्चन जी की मर्द फिल्म ही ना, बीर मैंने गाना होने चुको मैं हूँ मर्द तांगे वाला।
0: कोई भाई तो छट जाते हैं
1: रातों रात सितारा बुलंदी मत पूग हमारा मोहम्मद अजीज साहब रा।
0: तो पूग गा भाई बहुत बढ़िया है, कहनी के साई टेडी यहाँ की यहाँ बेरी मुलक खलक और घड़िए की झोला मेर का लको करे सलाम।
1: वाह सावा
0: फोत युगा मैं हूँ,
1: फोत युगा 2018 में।
0: हाँ तो भाई देखे के आपकी जो तरह गुल पेश करा फनकार मोटा हा और कोटी कोटी ने मन करा बड़े।
1: देखो नवलाबा आगलो नाम है आलोक धनवा और ए हिंदी भाषा रा बहुत ही मोटा कवि हा और आज है जकी आरी जयंती है और ए देखो के अपने काव्य संग्रह है और अलग अलग विधान मैंने बहुत सारी

0: धर्मेंद्र जी की पीठ लांगी है लंबी चौड़ी और के भगवान थाने 100 साल री जिंदगी देवे खायोड़ बढ़िया एकदम ताकत वाली पीठ पहली बार देखी
1: ऐसी बात है पुट्टा देख परान है जी को क्या नहीं के मने गुट्टा खड़ा हो नहीं
0: मैं थाने मोरा हाथ दो हिनान करो जना मारू
1: बोल रे मारू कर नहीं के फालतू बात करे
0: तो बचे अब
1: मोर है हूं बोरी अंगनी ना की
0: बोरी मोरा मत ले ले
1: तो पर हूं टड़का अंगनी पर तो
0: केवे नहीं ने बुला बा 10 फुट
1: मैं छीन उस तो
0: मैं आई को 10 फुट री पट्टी है जी की ते एक ला ले छोड़ देता
1: उस्ता पर देखो
0: और आज तो 8 आदमी उठावे
1: अरे भाई के कोनी बदे के टाइम ने नमस्कार है ना अगरा खाना पीना हाल है बात ही और हमें देखे अगर दास आई है के अपने हुड़ अपाड़ करियोड़ा है बाड़ कांटा करियोड़ा है
0: अरे आ बात बोलो
1: टेढ़ा है बीज लेड़ा है अब मैं उड़ लपड़
0: नवला बा मारी बात हुनो थे 8-10 दिन बारे गया ना लारे अपन दोनों खेता में गुआर बाई दियो बाजरी बाई दी निनाड करे आ 6 जन खेत में
1: ओ तो मैं हुयो जो दिन
0: अब बार छांटा हुई बीचे नी जन पनप का अपन बूंटा
1: की कौन पनप का ठीक है भाई है मां कई टोट मारे हाल साथ ही को पड़ी
0: कोनी कोनी हाल कोनी
1: तो नहीं है तुम उनका ही करा भाई
0: देखे उजिया उजिया यो नवला बा
1: खैर की कोनी
0: है थे जकी माला फेरो ना बी में 108 मिणिया है ना बी में थोड़ा मिणिया है जका बरसात रे फेर लीजियो
1: हां फेर लेऊ
0: हाँ
1: मैंने कोई अर्जिश होना
0: और वही
1: और बड़के होना
0: अब अर्थ होना यो
1: बहुत बहुत तो अरदास गीत है भाई मैं उड़ दो
0: अच्छा वो अरदास अरजास है
1: हाँ बात
0: लो लो हुनो हुनो

0: वाह भाई रे वाह, न्याय
1: ठंडक बाप रे नवला बा।
0: हाँ मैं है ठंडक बाप की।
1: हाँ
0: थे ही तो ऊपर मैं आज कभी बेड़ू हेलू राटकी
1: नहीं बेड़ू तो मैं आते ही जगह बापण बड़ी है नी मने क्यों रोटी।
0: अरे घर का भेजी लंका डावे मैं कि जदे हूं को तो
1: थे जको काले सब्जी
0: सामान मंगाऊं। ए कृष्ण जी जान सामान लाया पानी भाई ने कनु हूं घी मंगायो।
1: हां
0: बे हैं कह दियो नी को वो कह डब्ल्यू खाली खाली रे
1: काले ते गुवार पड़ी लाया को लाया देसी।
0: अरे लायोड़ा है
1: भाई आज बने गुवार पड़ी
0: वाकी कौन भाई थे बनवा लो।
1: हां
0: मुंह फेर दू माला
1: ठीक है
0: बैठो हूं जीते थे है
1: बेटा उजाओ मैं करूं
0: नहीं बैठो करनी जरूरत को नहीं हूं मारे आंखें खोल ले।
1: अच्छा
0: जीते बेड़ू तैयार कर दो।
1: हां
0: तारा ऊंचा आएगा
1: अब होना
0: टाइम ही होगा पूरा।
1: हां
0: तो भाई से ले वही राम राम
1: राम राम।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ें हैं, संगीत है समीर का और धुन बनाई है नदीम श्रवण।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं हम तुम पे मरते हैं फिल्म से ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी है संगीतकार उत्तम सिंह और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर उदित नारायण और साथियों ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कच्चे धागे फिल्म का ये गीत। संगीत है नुसरत फ़तेह अली खान का, बोल है आनंद बख्शी के, और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं खूबसूरत फिल्म का ये गीत। गीतकार है गुलजार, संगीतकार जतिन ललित, और इस गीत को गाया है अभिजीत और निर्जा पंडित ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लावारिस फिल्म का ये गीत। गीतकार है जावेद अख्तर, संगीत है राजेश रोशन का। इस गीत को गाया है उदित नारायण और साथियों ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे लावारिस फिल्म से। इसको गाया अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीत राजेश रोशन का और बोल थे जावेद अख्तर के। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप फिल्म संगीत और आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का ये गीत। गीतकार है समीर, संगीतकार जतिन ललित और इस गीत को गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

श्रोताओं, अगले गीत में आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक को, जो गीत हमने लिया है फिल्म डुप्लीकेट से। संगीत अनु मलिक का है और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है दुश्मन। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

0: श्रोताओं, दुश्मन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक

वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने।

0: और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight.

श्रोताओं, आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल। रात के 9:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म से। गीतकार है इंदिवर, संगीतकार MM करीम और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल का गाया यह गीत। फिल्म का नाम है दयावान, गीतकार है अजीज कैशी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: प्यार

खून भरी मांग अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म से। इसको गाया है आशा भोसले और साथियों ने, गीतकार इंदीवर, संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं कयामत से कयामत तक। फिल्म का ये गीत, गीतकार है आनंद मिलिंद, संगीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, माफ़ कीजिए, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार है आनंद मिलिंद, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं वर्मा मलिक का लिखा एक गीत। फिल्म है वारिस, संगीत है उत्तम जगदीश का और इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत सुनवा रहे हैं चांदनी फिल्म से। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है शिव हरि का और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और बाबला मेहता ने।

श्रोताओं, ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल है असद भोपाली की और संगीत है राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं आइए अब आपको सुनवाते हैं बेटा फिल्म से ये गीत। बोल है समीर के संगीत, दिलीप सेन समीर सेन का, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

श्रोताओं, साधना सरगम का आप सुन रहे थे फिल्म विश्वात्मा से, बोल आनंद बख्शी के संगीत विजू शाह का। आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ईमान बेईमान फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, ईमान बेईमान फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी वीमेंस T20 विश्व कप के अंतर्गत इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आपस के मैचेस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लैंड को आज के दिन में, आज जो उसकी टीम है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है इंग्लैंड की टीम के लिए। फिर भी एक अच्छा मैच होगा, इसलिए कि उनके पास जो बैट्समैन हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के पास जो पेस बॉलर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे हैं। एक एक मैच में उन्होंने अच्छे बॉलिंग करके, और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका का पेस बॉलर्स की खासकर, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छे बैट्समैन जो बैट्सवुमेन जो हैं वो इंग्लैंड टीम की, और जो खासकर जो पेस बॉलर्स पेस बॉलिंग जो कर रही हैं साउथ अफ्रीका की जो वुमेन्स टीम की, तो मुझे वो एक जो एक वॉर जो नजर आना है वो मुझे लगता है कि एक सही में एक बहुत अच्छा वॉर देखने को मिलेगा।
1: सो बैटल विद इन द वॉर टू लुक अहेड टू नाउ राजा, वी सीन विद इंग्लैंड द वे दे आर फंक्शनिंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। चार्ली डीन वाज कैप्टनिंग इन द गेम्स इन बिटवीन व्हेन सिव ब्रंट वाज इंजर्ड। एवरी इंडिविजुअल नोज देयर रोल्स एंड इज परफॉर्मिंग दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज।
2: आई थिंक दैट द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीम मेगा, एंड एनी टीम दैट प्लेज एज वेल एज इंग्लैंड हैज डन should fancy itself, even though the skipper looked a little disappointed that she was not able to get her first bowl. I think England got the batting to win this game, to put pressure on South Africa. And everything that is past, you know, you've been talking about a couple of games that South Africa won in the last two World Cups, both in the 20-over format and the 50-over format against England. I don't think that's going to count for much. What you do today is what is going to matter a lot, and I think England has got the well-balanced team. If you talk about South Africa, you're talking primarily about their pace bowling, not so much about their batting, not so much about their spin bowling. England seems the well-rounded side, and I think England will have the edge in this game.
3: ख्याति, होम कंडीशन और घरेलू सपोर्ट भी होगा इंग्लैंड के पक्ष में, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है या उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है इसकी वजह से?
4: अभी तक तो जैसा देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में उनको सपोर्ट ही मिल रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंडीशंस, एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से हमें कब हमें गियर सेकेंड गियर लगाना है, कैसे कब डिफेंसिव होना है, तो आई थिंक दे आर गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड एज वेल एंड एज वेल एज दे आर वेल अवेयर About the conditions.
1: जीशान, खास करके टॉप ऑर्डर ने काफी अतिशी बल्लेबाजी की है अब तक। टॉप थ्री का जो स्कोरिंग रेट रहा है 8.8 का अभी तक टूर्नामेंट में सर्वाधिक।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए उनके पास में जो जो उनके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें, तो हॉज का जो रहा है परफॉर्मेंस, वो उन्होंने सेंचुरी भी की है इस वर्ल्ड कप के सीरीज में, तो एक वो ज़रूर से नज़र आना होगा कि शुरू के 6 ओवर में क्या करती हैं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे कि पीछे की बातों को नहीं कोई भी सोचता है, जब आज का मैच होता है तो आज के मैच को देखते हैं, और फिर ये भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर है कि अगर आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है। उनके पास जरूर से वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है, मोरल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जो वुमेन्स क्रिकेट के टीम होती है उसको एक बहुत ज़रूरत होती है मोरल सपोर्ट की, वो है उनको इंग्लैंड के साथ में, थोड़ा एज है वहाँ पे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में होना है, बैटिंग करनी है उन्हें। शुरू के 6 ओवर के जो मैचेस होंगे उस 6 ओवर के मैचेस में उनको ज़रूर से ये समझना होगा कि कैसे उनके पेस बॉलर्स को उनको फेस करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है शुरू का 6 ओवर। अगर वो शुरू के 6 ओवर में विकेट कम गिरे और एक 40-45 के आसपास वो स्कोर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक मैच आगे बढ़ना इंग्लैंड के लिए फायदेमंद होएगा।
3: और आज बैटिंग ही तो रही है इंग्लैंड की, जिसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप के 5 मैच जीतने में सफल रही है। दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो मिला जुला प्रदर्शन रहा है, किसी में किसी खिलाड़ी ने बढ़िया किया, किसी और मैच में किसी और खिलाड़ी ने बढ़िया किया, तो 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के अलावा उन्होंने भी जीते। मनोवैज्ञानिक रूप से इस मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर स्थिति में होगी?
2: इंग्लैंड होगी, क्योंकि ओवरऑल कमांडिंग परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड के ज्यादा बेहतर रहे। अगर आप पिछले मैच भी देखें जो बांग्लादेश के साथ था साउथ अफ्रीका का, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब नहीं लग रहा था.

0: कि आसानी से जीत लेंगे वो मैच, लड़खड़ा गई थी टीम और वहां से उठ के आना जीतना अच्छी बात है, बट आई थिंक इंग्लैंड के पास है जो वॉट एवर एज दैट वी आर लुकिंग फॉर इज विथ इंग्लैंड, और खास करके क्योंकि इस पिच पे आज मैच हो चुका है ऑलरेडी, और जब आप और क्रिकेट खेलेंगे इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज विल कम इन टू प्ले एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली गिवन देम दैट चांस. अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए हर चीज सही बैठ रहा है और आज वो मैच इंग्लैंड के पक्ष में जा सकता है.
1: One of the players contributing to that edge is Dani Vyad-Toj, and we've seen in her case took a paternity break, and in fact didn't play a whole lot of games in the build-up. The games that she played, she struggled, but brought her A game to the World Cup.
2: Kathy. Yeah, I mean, she's a very good batter and she always give a very good start to the team, and she has given, she has proved in this tournament as well. But if you see that there are other batters also, because she knows that we have deep batting lineup, so that is the reason she is able to give those starts to the team. And if you lay a good foundation, definitely, I mean, they can find a very good score in this match.
3: जिशान, इतिहास का किसी मैच में कितना बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं 2023 के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल उसमें भी साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही थी, तो वो क्या साइकोलॉजिकल एज होगा उनके पास इस मैच में, इंग्लैंड की टीम प्रेशर में होगी?
4: जरूर, थोड़ा कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है कि हम 2020 और 50 दोनों में साउथ अफ्रीका से अगर हारे हुए हैं तो जरूर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन देखिए, आजकल जो क्रिकेट जो हो गया इतना प्रोफेशनल हो गया है और इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं जो भी क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो खासकर होते हैं, उनको वो पीछे की सारी चीजें जो है ना वो सब चीजें खत्म कर दी जाती हैं. आजकल जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो सपोर्ट स्टाफ इस तरह से उनको तैयार करता है ग्राउंड में जाने के पहले कि उनको वो पुरानी सारी चीजें, वो अपनी फैमिली और वो सारी चीजों को भूल करके ग्राउंड के अंदर में जाते हैं, तो वो जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि वो एक प्रेशर थोड़ा सा होता है. लेकिन मुझे खासकर अभी जो इनके परफॉर्मेंस मैं देखता चला आ रहा हूँ इंग्लैंड की टीम का, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पुरानी जो बातें हैं वो चीजें कहीं थोड़ी होंगी 1-2%, लेकिन उन चीजों का कोई असर यहाँ नहीं होएगा. और इंग्लैंड नो डाउट, मुझे जहाँ तक यकीन है कि इंग्लैंड एक अच्छा परफॉर्मेंस आज करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन पहले से कर देना इस मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर सकता कभी भी. हाँ, ये जरूर है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई लास्ट ओवर तक मैच होते हैं T20 के, और आखिरी वक्त में आखिरी बॉल पे भी कुछ डिसीजन बदल जाते हैं. जहाँ तक इस मैच की बात है, साउथ अफ्रीका और उनकी बात अगर आपस में करें आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड के सपोर्ट में सारी चीजें नजर आ रही हैं. ग्राउंड उनका है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उनके हैं, उनकी फैमिली के लोग होंगे आसपास में, उनके फ्रेंड्स होंगे सारे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है बहुत बड़ा सपोर्ट है. तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड और परफॉर्मेंस भी जो उनका है वो परफॉर्मेंस ये शो कर रहा है कि इंग्लैंड की टीम जो है आज के दिन में बेहतर नजर आ रही है बनिस्बत के साउथ अफ्रीका के. लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी बॉल तक, और वो भी T20 है तो वो आखिरी बॉल तक होता है, तो हमें वो इंतजार करना पड़ेगा कि कौन बेहतर तरीके से इस मैच को लेकर के जाता है.
1: और श्रोता किस टीम के समर्थन में है ये हम जानने की कोशिश करते हैं. रिमाइंड यू, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आर नंबर 011-2342-1084 and 85. लेट्स लिसन इन टू द फर्स्ट कॉलर. नमस्कार.
5: हेलो, नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम रवि जवाले है.
1: जी रवि, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी?
5: हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका आज मैच जीतेगी, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी गेंदबाजी ना अभिनंदा काका वो तैयार करेगी और फाइनल में पहुंचेगी जी. और मैं एक और जानना चाहता हूँ मैम
1: जी.
5: जी हाँ, आज की 11 आ दी, और कमेंटर पर से मेरा निवेदन ये है कि वो एम्पायर के बारे में भी बताया करके कौन कौन से एम्पायर है जी.
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए और आपकी टिप्पणी के लिए. वेल, आवर लिसनर देयर सर्टेनली नॉट प्लेइंग इट सेफ, नॉट प्लेइंग इट विद अ स्ट्रेट बैट, इज एम्फेटिकली डिक्लेयर दैट साउथ अफ्रीका विल विन इट, कर्टसी आया बोंगा Kaka, and South Africa do have a great bowling attack.

0: will bear fruit. They'll have to play very good cricket to beat England.
1: Or मेघा हमारे एक श्रोता ने कहा है कि कमेंटेटर जो है वो अंपायरों के नाम बताएं कि आज के मैच में कौन कौन से अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो आप बता दें।
2: जी बिल्कुल, एलोइस शेरिडान, जैकलीन विलियम्स हैं दो अंपायर, और टीवी अंपायर हैं क्लेयर पोलोसैक, और रिजर्व अंपायर हैं कैंडेस या बोडे।
1: और अब सवाल ख्याति से कि दोनों टीमों की कप्तानों पर अगर नजर डालते हैं तो इंग्लैंड के कप्तान नैट सिवरब्रंट फिट होने के बाद इस मैच में वापसी कर रही हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फॉर्ट फॉर्म के लिए संघर्ष कर रही हैं पूरे टूर्नामेंट में, और सेमीफाइनल जैसा अहम मुकाबला है। दोनों की कैप्टेंसी के साथ साथ बल्ले की कितनी बड़ी भूमिका इस सेमीफाइनल मैच में रहने वाली है?
3: देखिए, अगर आप इनका पुराना अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इन दोनों का मिडल नेम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे ये बहुत अहम माना जाएगा। एंड जिनका मिडल नेम ही कंसिस्टेंसी है, तो आई एम श्योर दैट दे विल प्रूव देयर बैटल एंड मेटल। एंड डेफिनेटली वुल्फॉर्ट का, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, उसका भी हर बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई थिंक इट्स अ बिग गेम फॉर देयर टीम। डेफिनेटली शी विल शो अ गुड गेम टूडे।
1: और हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाते हमारे श्रोता, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। जी स्वागत है आपका।
4: नमस्कार सर,
1: नाम बताइए अपना।
4: सर मैं विश्वप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी से।
1: जी अपना सवाल और जो भी टिप्पणी आपकी वो कृपया बताएं।
4: सर मेरा प्रश्न ये है कि आज जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड का, मैं चाहता हूँ कि आज दक्षिण अफ्रीका जीते, क्योंकि इनका लक हमेशा इनके खिलाफ जाता है, आज इनको ईश्वर जिताए। और मेरा ये प्रश्न है आपको कि आज क्या दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है क्या?
1: जी प्लेइंग 11 की बात करें तो बदलाव तो है कुछ दोनों ही टीमों में, और हम आपको बताते हैं कि क्या बदलाव है। मेगा बताएं कृपया।
2: बिकॉज द कैप्टन कम्स बैक, नैट सिवरब्रंट कम्स बैक फॉर इंग्लैंड, सो सोफिया डंकले हैज हैड टू मेक वे फॉर हर, सो दैट्स द चेंज इन द इंग्लैंड प्लेइंग 11। एंड सोफिया डंकले हैड बीन फीचरिंग इन द गेम्स वेयर वी डिडंट सी स्किपर नैट सिवरब्रंट अराउंड। एंड टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, दे हैव गॉन फॉर वन चेंज इज वेल, एंड सुनील लूस इज कम इन फॉर डेन वैन नीकर्क।
1: जी और राजा अगर इस मैच की हम बात करें फिर से एक बार फिर, तो इंग्लैंड के अभी तक के अभियान में जो है वो कंसिस्टेंसी लगातार दिखी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता, भारत के खिलाफ भी कांटे का उनका मुकाबला रहा, तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है?
5: ये दो मैचेस उनको तैयार भी किए होंगे, एक टफ मैच जो सेमीफाइनल होता है उसके लिए शायद इंडिया का मैच या बांग्लादेश का मैच उनको तैयारी में मदद की होगी, लेकिन उसमें से कितना सीख लिए हैं और फिर आज उसमें सुधार कितना ला सकते हैं अपने गेम में, खास करके उनके बल्लेबाजी में। दे हैव टेकन अ चांस पहले गेंदबाजी करके, उन्हें लगता है कि इंग्लैंड को अगर कम स्कोर में रोक लें तो उनके बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं फिर यू कम अंडर प्रेशर टू विन द मैच टू डिफेंड द स्कोर, तो उनके जो बल्लेबाज है वो मैच जिताना चाहिए उनको। क्या वो आज हो सकता है ये देखने वाली बात है। इंग्लैंड के पास सारे वो पत्ते हैं, दे हैव गॉट इनफ एंड मोर ट्रम्प कार्ड विद देम, लेकिन साउथ अफ्रीका को चाहिए कि अपने बल्लेबाज आज कुछ करिश्मा कर दिखाए।
2: And Khyati, talking about South Africa's bowling, we talked about the 25 wickets that the Pacers have taken, including Shabnam Ismail, who reversed her retirement to come back and play in the T20 World Cup. She's an experienced campaigner. How would you assess her comeback thus far?
3: So definitely, I mean, it's a very good decision, I would say, because their team is at their best at the moment, and there are chances they can lift the trophy as well. And because if you have seen their past performances, they have done really well, and it's a good decision because now the team looks very balanced and packed, and the three bowlers like Ismail Khan and the other as well, they're doing really well, and it's a very good balanced pacing attack. And I'm sure that she will definitely put an effort to lift this trophy for her team.
1: आज जिशान फिर से जो है बल्लेबाजी करने का मौका पहले इंग्लैंड की टीम को मिला है। टॉप ऑर्डर उनका बहुत कमाल का प्रदर्शन कर रहा है, और एक तरह से माना जा रहा है कि इंग्लैंड के टॉप थ्री बल्लेबाज और उधर साउथ अफ्रीका की जो फास्ट गेंदबाजी है उनके बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में इंग्लैंड क्या स्कोर करे कि थोड़ा सा अपने आप को

0: कंफर्टेबल स्थिति में पाए।
1: मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि जो आज है वो बेसिकली एक तरह से एक वॉर है जो पेस बॉलर्स उनके हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के और जो इंग्लैंड टीम के जो बैटर्स हैं उनके बीच में एक वॉर है। मैं फिर से ये कहता हूँ कि शुरू का 6 ओवर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है T20 के मैचेस के लिए, दोनों के लिए, एक पेस बॉलर्स के लिए जो दूसरी टीम के हैं और जो बैटिंग जो करने आएंगे उनके लिए। तो ये खासकर बहुत ज़रूरी है कि जो खासकर वो जो उनके बैटर हैं उनके बारे में ये ज़रूर है कि उन्होंने 100 भी किया था लास्ट किसी मैच में हॉज ने, तो हॉज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो एक लंबा अगर वो खेलने की कोशिश करें, लाइक अगर वो ये सोच के चलें कि हम शुरू के 6 ओवर में 50-60 बना दें और आउट हो जाएं, फिर वो प्रॉब्लम होएगी, इंग्लैंड टीम को बनना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये होएगा मेरे ख्याल से, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो भी सपोर्ट स्टाफ हैं उन्होंने बनाया होगा कि शुरू के 6 ओवर में जो इनके पेस बॉलर्स हैं उसको कैसे फेस करना है, कम विकेट गिराना है, आप आगे लेके टीम के चलेंगे। अगर ऐसा करने में वो सक्सेस होती हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा लंबा स्कोर इंग्लैंड खड़ा करेंगे पेस बॉलर्स के अगेंस्ट में, और बाद में टीम जो उन इंग्लैंड टीम के पास में स्पिनर्स हैं कुछ, मैंने देखा है कि काफ़ी विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने और इंग्लैंड को जिताने में उनकी बहुत मदद रही है। तो मेरे ख्याल से ये शुरू का जो 6 ओवर का मैच है इंग्लैंड के लिए खासकर और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए खासकर ये डिसाइड करेगा। फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी बैटिंग करने आता है या जो बॉलिंग करता है दोनों के लिए, कि वो कैसे कम से कम स्कोर में इन्हें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। जो इसमें कामयाब होंगे वो ऊपर की तरफ ज़रूर से आगे की तरफ वो टीम जो है बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये सोच करके आई होगी कि हमें शुरू के 6 ओवर में अगर 40-45 भी रन बनते हैं तो वो उतना बनाएं, विकेट ना गिरने दें, सो डेट के बाद के जो ओवर्स होंगे उसमें जब बॉलर कोई दूसरे नए आएंगे उनकी तरफ से बॉल डालने के लिए तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आगे हिट करके और 150-60 के आसपास स्कोर अगर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे टारगेट होएगा तो वो बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट जो सीरीज में देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूर है क्रिकेट है, आपको थोड़ी सेंसेबल बैटिंग करनी पड़ेगी आज के दिन में, इसलिए कि ये बड़ा मैच है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में अगर आप थोड़े से भी लैक किया, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने आपको लेकर के आएंगे तो भी मुश्किल होएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना के आएंगे और ज़रूर से एक ऐसा स्कोर खड़ा करेंगे जो अफ्रीका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होएगी।
0: और राजा फील्डिंग की आज कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है, साउथ अफ्रीका का जो स्टैंडर्ड होता है फील्डिंग में वो इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा नहीं है, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी आज?
2: बहुत बड़ी होगी। कोई भी मैच में, क्रिकेट का कोई भी मैच, मोहल्ले का मैच हो या ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हो T20 का, फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शायद भारत के टीम को बहुत बुरी तरीके से पता चला होगा इस टूर्नामेंट में कि देयर फील्डिंग वाज नॉट अप टू स्क्रैच, और क्योंकि साउथ अफ्रीका कैन सेव एटलीस्ट 10 or 15 रन, देयर विल बी अ गुड एडवांटेज फॉर देम। काफ़ी फिट टीम है एंड आई थिंक इट गोइंग टू हेल्प देम, लेकिन मैच तो इंग्लैंड की ओर ही जाता हुआ दिख रहा है मेरे को। पहले 6 ओवर में पता चल जाएगा, बट आई थिंक इंग्लैंड इज विल हैज द कैन कॉल द शॉट्स इन दिस गेम।
3: Albeit subtly, we've had predictions from our experts, but thanks a lot for your analysis as well. Thank you, Dharmendra. So, it is going to be England's formidable top order that will be up against the pace attack that has picked up 25 wickets for South Africa. A battle really to watch out for in this first innings as we wrap up our show here at First Ball 20 with the two England openers, Danny Wath-Hodge and Amy Jones, heading to the centre. First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का T20 महिला विश्व कप का सेमीफाइनल नंबर 2 हुई है।

दूसरा सेमीफाइनल आमने सामने होने वाली टीमें इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, और मेजबान है इंग्लैंड और वेल्स में इस बार के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसा आप प्रोग्राम में भी सुन रहे थे इस हमारे विवरण से पहले कि पलड़ा इंग्लैंड का भारी नजर आ रहा है कागज पर, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका जो कि पिछले लगातार दो तीन

0: आसान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफर।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है। और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया

0: the upgraded digital platform, health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है. एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर. हमारी आज की यह सभा अब समाप्त होती है. कल सवेरे की सभा में आपसे पुनः मिलेंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. जय हिंद.